नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इंकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी

0: नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सीखना कभी बंद ना करें, हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए इस श्रृंखला का 13वां भाग। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर कार्यक्रम पेश होगा आज के फनकार। कार्यक्रम आधारित है अभिनेत्री वैजंती माला पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में आप सुनेंगे आज के मेहमान में लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश में। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 9:00 नए पुराने कार्यक्रम सुनिए 5:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट रूपाली सुरवे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। 8 बजे सुनिए हवा महल में झल की तमाशा। लेखन निर्देशन है गुरमीत रामल मीत का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए और 10 बजे सुनिए छाया।

और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नाम स्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्री राम का कार्य करके लौट कर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

श्रृंखला वर्षा चौमासा प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: श्रोताओं नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्जापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है जिनको कजली देवी भी कहा जाता है
0: जी।
1: और श्याम रंग श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीजें गाई जाती हैं, इस कारण
0: कजली देवी
1: जी, कजली देवी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसका भी एक संबंध
0: जी
1: इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीजें मिलती हैं, कुछ कथा कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी पड़ा।
0: काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना, और वाकई मन में फिर हूक उठने लगती है। फिर वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है
1: जी बिल्कुल,
0: वो मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में
1: जी जरूर
0: खुल जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी?
1: एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये, और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग

0: जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो बहुत गर्मी लगेगी, या बहुत मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है।
1: कितनी अनूठी बात है
0: जी। हाँ। पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है, तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, ये कैसी चीजें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा,
1: मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है। इसमें ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो वो कहते हैं कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंगरेजवा, मतलब साड़ी का जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंगरेजवा।
1: वाह।
0: धानी किनारी होनी चाहिए। हाँ। बॉर्डर जो है वो धानी रंग का होना चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा।
1: वाह।
0: भीग गई चुनरी वर्षा में, रिम झिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा।
1: बहुत खूब
0: झूले भी पड़े हैं,
1: वो भी डाली डाली।
0: हाँ, हर डाली पे झूल झूल झूलवा पर गावे कजरिया। उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है। झूली झूली झूलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंगरेजवा।
1: वाह।
0: तो ये वाह चीज आपको सुनाना चाहिए।
1: वो नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग होती है। शुभा जी, आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है,
0: भाषा का ज्यादा भेद है। जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली, और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा,
1: चार कोस पे पानी बदला।
0: हाँ,
1: कोस पे पानी
0: बदली, और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है
1: जी,
0: वो अलग अलग बदलती जाती
1: तो
0: है।
1: तो अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है
0: जी,
1: जो शब्द बताए हैं, वो मिर्जापुरी,
0: ये भोजपुरी कजरी है
1: जी।
0: जी।

0: शिवाजी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म के इस गाने के साथ। आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

आप सुन रहे थे नास्तिक फिल्म से इस गाने की झलकी, लेकिन इसके पहले आप सुन रहे थे शबाब फिल्म का गाना, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत। आइए अब सुनते हैं नास्तिक फिल्म से वो गाना जिसकी झलकी आपने सुनी थी, लता मंगेशकर की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के सुनिए बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना बूट पॉलिश फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में शंकर जयकिशन के बोल, संगीत है शैलेंद्र का।

0: हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम तीन नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होगा, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: इस बीच विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसद के दोनों सदनों ने कल विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्य चयन समिति ने पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन

0: कल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
1: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में जैसा कि आपकी अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन, यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
0: कार्यक्रम में दूसरे दिन भी प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकास खंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है।
2: इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकली। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल और अमरोहा में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है। हापुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया।
3: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए रंग दे बसंती अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत कल लखनऊ में विश्वविद्यालय के पास भित्ति चित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने माफिया मुक्त और बदलते उत्तर प्रदेश की थीम पर सार्वजनिक भित्ति चित्र बनाए। इस अभियान के क्रम में आज मुजफ्फरनगर में कॉमिक वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज ही रंग दे बसंती अभियान का गीत डर से आजादी भी लॉन्च किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
4: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
0: प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की खबर भी मिल रही है। उधर मौसम

0: मौसम विभाग आगामी 18 अगस्त तक मानसून के फिर सक्रिय होने और राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना जता रहा है। इस बीच पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहां बाढ़ से राहत के लिए विविध इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बासगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना हजरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं संगम फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं गंगा जमुना, इस फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत ओपी नैयर का। इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की

0: सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
1: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
6: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम

0: मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
2: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म

0: परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुँच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने सीबीएसई द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सीबीएसई 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास, डिजी लॉकर और सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया, कहा बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की मॉर्निंग को गुड बनाते हैं एक दीवाना था इस फिल्म के गाने के साथ, लियोन डिसूजा, सुजैन डिमेलो की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक इस फिल्म से। शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी को। इन्होंने सदमा, नागिन, मिस्टर इंडिया, चांदनी और लम्हे जैसी कई फिल्मों में आइकॉनिक रोल्स किए। पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी का आज याद का दिन है।

आप सुन रहे हैं उनकी हाल ही की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से ये गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।

आप सुन रहे हैं धड़क फिल्म से ही गाना, अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है अजय अतुल का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बचना ए हसीनो, इस फिल्म से लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे ये गाना बचना ए हसीनो इस फिल्म से। वैसे इस फिल्म के कई गाने, खास तौर से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड रेट्रो से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए इस फिल्म के कुछ गानों में आपको राहुल देव बर्मन के गानों की झलकी सुनाई देगी। खैर, इस गाने को के म्यूजिक को तैयार किया था विशाल शेखर ने और इस गाने को लिखा है अन्विता दत्त ने।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

0: कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का। तो सबसे पहले जब आपको एक एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
2: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखने की ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
3: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
4: एक्चुअली ये जो एक्सपेडिशन है, इसकी प्रिपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपेडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटली थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के

0: जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
1: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
0: जी, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
2: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि endurance और stamina की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई color ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम।
0: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
0: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने, जागने, सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
1: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना, खाना, पीना, जागना कुछ

0: भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है. एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था. धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रह के सीखा.
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था. और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था. तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा. तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा. प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन बन गया,
0: दिन महीने बन गए.
1: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया? तो कोई वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है, उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड. एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था. वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक, मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए.
1: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना
3: आए. यस.
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गया?
0: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान था बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में. केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए. तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे आके खत्म हुआ.
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी, आपने बहुत ह्यूमिड भी,

0: गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया, मन में क्या दुक-दुकी चल रही थी?
1: अभी भी जैसे हम आए हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए, बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है। हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना, जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, तेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
0: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश के पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही है। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
0: मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था, तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते। उस
1: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब 0 हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 knots ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, और एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम

0: सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
1: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया, इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन थर्ड स्टेज हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू वॉट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे।
2: आप बताएं स्पॉट लीडर वैशाली की, नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल, ठीक है, तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
3: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि अब मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी।
2: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
0: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
2: तो जैसे इतनी चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
1: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे, एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना। एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है, तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे। बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी, तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल।
2: तो आपने वैशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
3: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। What happens on the boat stays on the boat.
2: तो strong lady, मतलब ये है नारी शक्ति, आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है। टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं। मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको, 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
0: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्स लिए थे, जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे

0: भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपेडिशंस में हमारा बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज अ विमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे विशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं
2: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेश साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा?
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वॉज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी तो हम उसको क्रश करते थे एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो जरा ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
3: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था। और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में और बहुत ही दूर है ये क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
1: सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: विशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगे मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
2: I would like to say कि success comes with hard work, perseverance and most importantly not having an ego. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter जो उन्होंने मेरे को दिया था and जब मैंने ये expedition start किया था तो मैंने वो letter लेके गई थी and that is what kept me going through this entire
1: yes. मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
2: थैंक यू वेरी मच।
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत

0: अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
2: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
3: जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: देश में एक साथी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धनदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
0: नहीं, अभी इसकी जरूरत है।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
0: अब फिर कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर,

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमती अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ

0: फिर अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे हैं गुंडे कहीं के।
2: अरे देख रही धनु, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलक ना ही सारे से निकाल दे एक मिनट में।
2: अरे वाह रे महारानी वाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से। कहा
1: फोकट का ना ही, इकन्नी दिए हूँ इकन्नी, चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन।
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है पटेरे, एक को समझाए दियो
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर
1: हट रे, हट, हट, हट, हट, हट, हट, हट, हट,

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वॉन्टेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंती माला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

0: फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।
1: जाकर!

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है, सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
2: करेक्ट,
1: हाँ, चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ,

0: वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई मालिक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी
1: है ना, और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो।
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे बम्बई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल।
0: हाँ मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के सीडी पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, और
1: बिल्कुल, एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है।
0: 1 मई में उनको कॉल किया
1: क्या
0: करता
1: बात है, मैं भी
0: था। तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया वो।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर
1: गाना।
0: जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल, जरूर।
0: शैलेंद्र
1: हाँ, सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा, मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी, तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया, वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा, कि कुशारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद, अभी तो मुझे मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहां से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब है?
0: आएगा। हाँ ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश ने,
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी, उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं।
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं

0: नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही, लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं, तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं, लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहां प्रोमो करने के लिए गया, वहां बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूं। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह,
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन

0: इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास दो शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में वो शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड
1: वाह वाह
0: मैं
1: वाह
0: अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोचे चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें, मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था, एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है, तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते जाते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ हाँ
1: पंच।
0: हाँ तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था हमने। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं इसको। तो मैंने कहा
1: बिल्कुल
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक्स सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड।
1: लर्निंग कोर्स।
0: हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे

0: हमेशा वो ट्रीट करते हैं, मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ, मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: से
1: एंड छूट जाते
0: वो
1: हैं जो
0: लूज एंड
1: बाद में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते
0: हैं
1: हैं।
0: जो बाद में आप ना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरी जंका। मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका के
1: बिल्कुल
0: अंदर।
1: बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस, यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: साम्बा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: साम्बा?
3: नो।
2: टेक्विला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो

0: करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग की है, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
1: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
0: बहुत ज्यादा वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
1: गजब।
0: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए
1: बिल्कुल।
0: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
1: वाह वाह।
0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक।
1: वाह वाह।
0: जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
1: गजब।
0: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना हम
0: सब
1: अपने
0: सब सब
1: सुनने वालों
0: रोमन
1: को बता
0: सब
1: देंगे,
0: रोमन में
1: सब
0: पढ़ते
1: लोग
0: हैं,
1: रोमन
0: सब
1: में
0: रोमन में
1: मानते।
0: पढ़ते हैं।
1: जी
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो
1: क्या बढ़िया
0: एक
1: बात
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था
1: है।
0: रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने। अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। तो बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेंगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो 11:15 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और वो पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह।
0: फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत इजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में
1: जाती।
0: कहीं

0: कहीं कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इस बात कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजा मौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला, और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूं।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बनके रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: मुकद्दर का सिकंदर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी हिंदी वर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलू, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें खरीदेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो

0: में 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
1: बिल्कुल
0: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
1: बनते
0: चाचा
1: बनते
0: चौधरी
1: रह
0: पे
1: जाती
0: शुगर।
1: है,
0: हाँ,
1: मतलब कई बार
0: डोगा की,
1: अनाउंस
0: डोगा
1: होता है।
0: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
1: हाँ।
0: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है, चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी, मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है, मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है, बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
1: दौर
0: जो
1: है
0: दौर है।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूं कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ
1: बिल्कुल।
0: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
3: आज के मेहमान।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना जरा सुनिए कैसे बना ये गाना
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा अब ये क्या उल्टी हरकत है हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा देखिये मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के रहा
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर विविध भारती

0: Taranga.
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर, ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: फिजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कादर गुलाम मुस्तफा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफा की आवाजें, शौकत अली ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द बेस्ट ऑफ सजदा, इस एल्बम से हम आपको ये गजल सुनवा रहे थे जिसे साहिद कबीर ने लिखा था, जगजीत सिंह का संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजले का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से, हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार।

0: सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

लकी अली को आप सुन रहे थे उन्हीं के संगीतबद्ध किए इस गीत में, जिसे लिखा असलम ने और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय

0: गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं के फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैया राजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम

क्रम में आप सभी हमसे जुड़ते हैं फेसबुक पेज के जरिए। और अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमें आपको मिल जाएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का फेसबुक पेज, और वहां आपको हर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हर दिन हम एक इबारत आपके सामने रखते हैं और उनमें ही शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में। और आज की इबारत है, सरगम मन की धुन में बसने लगी है। फिर से, सरगम मन की धुन में बसने लगी है। गाता है मन मेरा तो बजती है सितार कहीं, डोलती है डालियां, सरसराती हवा छेड़ती है रागिनी, गरजते हैं बादल जैसे दे रही हो ताल तबले पर, सुनकर उसे उतरती हैं अप्सरा सी बूंदें धरा पर, घुंघरुओं से थिरकती नाचती हैं हो मगन, झूमकर गाने लगती है नन्ही चिड़िया कहीं कोमल स्वरों में, सुना है कभी इनका गीत, मन में बसने लगा है प्रकृति का जीवन संगीत। तो इससे आपने अंदाजा लगाया है कि प्रकृति के जादू या प्रकृति की जो अलग अलग तरह से संगीत से किस तरह से होता है, किस तरह से हम महसूस करते हैं, उसके विषय में आज हम बातें करने वाले हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि प्रकृति के बीच आप कैसा महसूस करते हैं, या आपने कोई ऐसी प्राकृतिक यात्रा की हो जो आपका मन के भाव कुछ अलग रहे हों, मान लीजिए नकारात्मकता रही हो या कुछ उदासी रही हो, और ऐसे समय में जब आपने प्रकृति की यात्रा की हो और प्रकृति का प्रभाव आपके मन पर पड़ा हो, तो उन किस्सों को आप हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी जलाशय जो होते हैं, प्राकृतिक जलाशय, नदी, तालाब, झरने, ऐसे प्राकृतिक जल के संसाधनों का उपयोग आपने कभी किया है, वहां का पानी पिया हो, या वहां पैर ही बस थोड़ी देर डुबाकर अगर हम बैठ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कभी अगर हम वहां जाकर उस ठंडे ठंडे पानी में नहाते भी हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो भी हमें बताइए। हमारे एक साथी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं एक अद्भुत संगीतकार है, जब मन के सरगम जागती है तो हवाओं की सरसराहट रागिनी बन जाती है, डालियां लय में झूमने लगती हैं और बादलों की गर्जना में मानो तबले की थाप सुनाई देती है, फिर बारिश की बूंदें घुंघरुओं की तरह धरती पर उतरकर नृत्य करने लगती है, नन्ही चिड़िया की मधुर चहचहाट इस संगीत में अपनी कोमल तान जोड़ देती है। सच है, प्रकृति के सानिध्य में बिताया हर पल मन को शांति से भर देता है। तो आप इस शांति का उल्लेख हमसे कीजिए और हम तब तक आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म से हमने लिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की ये संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके इस मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों की रुंझुन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है, शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहाँ तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वही मेरे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृत के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहां बोलते बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने नहाने या फिर पानी पीने या सिर्फ पैर डुबाकर उस जल को महसूस करने का कोई काम किया है? किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं है?

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज से, और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी, नहरों का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकून दायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बता रहे, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने हंसने बात करने समय हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है, संगीत पद्धति भी इसके लिए काम आती है। हमारे साथी कह रहे हैं हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है, यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाजों में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुरताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरे प्रकृति से लोगों के मन मोह लेती है, और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदे प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदे गिरती है तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है, एक हल्की से नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं, तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है, और दूर बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार और हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत न किसी सभा में बजता है, न किसी स्टेज पर जहां हम रुक कर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं, उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहां रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भरकर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फोटोज खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फोटोज भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठकर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत। हमें बताइए आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूं। वहां हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहां की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदें होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहां की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनंद फानन में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके

मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें, क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदे, हवा के रुझुन नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में उसे महसूस कर सकें। आंखें भी चलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भाव विवल हो जाते हैं और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना, वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूं हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूं, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूं। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छिड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायले के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल हैं जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए। और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कल कल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है, लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो इस हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा, या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब तिरकने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे, कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है, हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है, कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है इसे अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत, यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है। संगीत के आदि स्रोत भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं, माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा वो कह रहे हैं, छोटी गिलहरी की कहानी, लेकिन उससे पहले जब संगीत के कणकण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। इमासर देसाई और मलेशिया की आवाज उम्मीद, जावेद अख्तर ने से लिखा, ए आर रहमान का संगीत। और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी, वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत के मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई। डरी सहमी सी कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ सेकंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी है, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षणभंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार की सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था, वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां

जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है। ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम छोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम छोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में

टपकती बूंदों में, रिमझिम बारिशों की फुहारों में, कल कल बहते झरने में और चिड़चिड़ चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

0: राम जन टिकदा धीकी धीकी टिकदा धीकी धीकी टिकदा।
1: मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल स्रोतों के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाजें सुनी, बूंदों की आवाजें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली भारत है। जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्रकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। और बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है। मैं चूकता नहीं, गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है। महानगरों कार्य व्यवस्थाओं से आजीज होकर आकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल।

और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे, कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूँ, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज में।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहे लाली जुनर मोहे लाली जुनरिया
1: संघर्ष फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते दोस्तों, आज की त्रिवेणी में संकल्प की बातें होंगी। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का संकल्प लेते हैं। इनमें से कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ संकल्प आंशिक रूप से पूरे हो पाते हैं। हो सकता है हमारे संकल्प बहुत मामूली हों, लेकिन इतना तो तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर ये कोई न कोई उपहार हमें जरूर देते हैं। संकल्प हमारे जीवन को बदलने की कवायद रखते हैं, वे आंतरिक बदलाव लाते हैं, वे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। चाहे हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हों या नया अपने भीतर कुछ विकसित करना चाहते हों, जब हम संकल्प ले लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही करना है। छोटी छोटी बातों का या छोटे छोटे कामों का संकल्प भी लिया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, कर्ज चुकाना, पैसा बचाना, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करना, फिट रहना, पौष्टिक भोजन करना, बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश करना, नशे की आदत को छोड़ना, तनाव को कम करना, पैदल घूमना, परिवार को समय देना, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। बेशक सभी संकल्प सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इनके साथ एक विश्वास भी छिपा होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच तो रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं। हर संकल्प अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ सकारात्मक संभावनाएं जुड़ी होती हैं।

छोटे संकल्प अक्सर बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हर दिन 10 रुपए की बचत करना या हर महीने एक पौधा लगाना, ये बातें हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव तो नहीं ला पाएगी, लेकिन सफलता की ओर ये पहला कदम तो जरूर होगा। संकल्प अगर वास्तविक हो तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ने से अच्छा है हम सहज और सरल संकल्प पहले लें। आज के व्यस्त दौर में किसी काम का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। ये संकल्प हमारी उन ख्वाहिशों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पूरा तो करना चाहते हैं, पर समय की कमी और समर्पण के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। सकारात्मक संकल्प मानसिक संतुष्टि में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हो सके तो किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions.

0: Sadly, only 16 questions, 52 zero hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
2: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
3: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
4: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का दुर्ग नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बरेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
5: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
6: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
7: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सब

0: सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रूपये की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रूपये की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
4: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
5: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
1: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
1: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
1: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1850

0: सेवन के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
1: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
0: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कोल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
1: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
0: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
1: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
0: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
0: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया।

0: भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
1: कौन है?
2: मैं हूँ अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
2: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
2: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहाँ त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
1: ये इस शीशी में क्या है?
2: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
2: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
2: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
0: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले।

0: बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
3: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोरवीर।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं करेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: माय गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर,
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल।

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में और लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
3: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
4: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
3: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप कर हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
3: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: करते
3: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
5: ये जाओ सर, ये जाओ सर।
0: कप्तान के मरते ही

0: वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
2: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता

0: और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको
1: जी
0: और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, और अभी
1: जी
0: तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12 12 14 14 घंटे काम होते हैं। तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं, इन दिनों तो क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती
0: और
1: हैं।
0: कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द, तो वो आप भूल जाते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई न कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है, उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं। कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें,
1: जी
0: पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी, और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज
0: जी
1: सेवा से वो जुड़ी हैं।
0: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
1: जी
0: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार
1: जी
0: होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते नमस्ते करना और हाथ मिलाना,
1: जी
0: लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
1: दुख में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है, बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती
1: जी
0: के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा,
0: जुड़ा।
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें,
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उसने उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए, जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ,
1: कितनी है,
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब एक उनके लिए अंग

0: ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
0: जी
1: आंख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो
0: जी
1: फॉर्म भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है,
0: जी
1: समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
0: जी
1: करना पड़ता है। तो ये बात हो गई, और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
0: जी
1: लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम न चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
0: जी
1: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
0: जी
1: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
0: जी
1: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा, तो ब्लड

0: रक्तदान के लिए भी
1: जी
0: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
1: जी
0: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
1: जी
0: कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब एक गीत सुनते हैं।

0: सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचाकर वो इस दुनिया से गए।
1: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है।
0: जी
1: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई
0: जी
1: बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नजदीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाएं,
0: जी
1: कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। हाँ, सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इससे क्या होता है वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं। तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं,
0: हाँ
1: भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है।
0: जी
1: अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें, महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं,
0: जी
1: मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है,
0: जी
1: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहां भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों
0: जी
1: को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो
0: जी
1: वहां पर बैठ खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना, ये भी ठीक नहीं लगता है।
0: और कई बार ये भी बताने लगते कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने, कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें, आप
1: बिल्कुल।
0: कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं, और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है, उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे। जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर
0: हाँ
1: जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है, बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचे, तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा
0: जी
1: नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना,
0: हाँ
1: मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना, उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते
0: जी
1: हैं।
0: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं, तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने

0: नेहा,
1: जी
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक एक कहानी उन्होंने बता रही है कि वो उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी

0: आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता है, नहीं यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
1: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
0: जी
1: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है।
0: जी
1: असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
0: जी
1: जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
0: जी
1: जरूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
0: जी
1: श्रोताओं को।

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के
1: जी
0: घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं,
1: जी
0: बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके। बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस

0: बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से उनके पास, अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है, जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती हूँ, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं, शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूं शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूं या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूं।
0: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किससे उन किनसे उन बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
1: अब नेहा ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय कहा हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया

0: मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
1: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था। और तो और, स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
0: और आखिरकार पेट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर। और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
1: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुकिम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए। और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
0: बिल्कुल। और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया। और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया। और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती, तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर यह हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुकीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
1: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए। इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुकीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रही, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
0: जी। और पैट्रिशिया मुकीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुकीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुकीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
0: और तकरीबन 70 वर्ष की पैट्रिशिया मुकीम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
1: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पैट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
0: जी।
1: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत
1: जी
0: सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूं, अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VBS के प्रोग्राम सुनता रहता हूं, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं,
1: जी
0: पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्या
1: कुछ
0: क्या
1: भी
0: नहीं
1: कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के
0: कर
1: साथ सब चीजें की जा सकती है, ऐसा ही तो, मतलब हमने शुरुआत से ही ऐसे ही तो सब
0: बिल्कुल
1: बड़े हुए हम सब,
0: सही बात
1: रेडियो
0: है।
1: सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय।
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है, एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे, ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ, पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए भी समय निकल ही जाता है, और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मी संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिया जुल्मी संग आंख लड़ी? 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं। तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो
1: जी
0: इनको स्पष्ट कर दे कि आज कोई शोक का दिन नहीं है, ये
1: जी
0: तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते
1: जी
0: हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई,
1: जी
0: कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहां पर शिष्टाचार की बात है
1: जी
0: तो
1: लेकिन ममता जी, एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी,
0: बिल्कुल
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है। और
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और
0: को है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है, और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है, अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है,
1: जी
0: तो
1: इस शौक से मुक्ति पाना
0: मुक्ति
1: जरूरी है।
0: पाए बच्चे, क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल,
1: जी
0: और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए,
1: जी
0: खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत

0: में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता
1: जी,
0: है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है।
1: जी।
0: कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम
1: जी
0: ये नहीं कर पाते। तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं। और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी ही मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से ऊपर सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार, तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूं, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको,
1: जी
0: जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली,
1: जी
0: विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं। और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म
1: जी
0: की गजल, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था,
1: जी
0: तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल रखती है वो
1: जी
0: कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो,
1: हाँ
0: तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया। और एक साल नहीं, कई साल उन्होंने उर्दू सीखा। और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे।
1: जी
0: तो ये बड़ी बात है, हमने उनका नाम इसलिए यहां पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए,
1: जी
0: लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र
1: उम्र नहीं
0: नहीं
1: होती,
0: होती है। और गाना सुनवाने के लिए भी
1: कोई समय नहीं होता,
0: सुनते हैं गाना।
2: जब सदा संग रहे ना को फिर दुख को

0: पास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हो जहां पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में, कई जगह तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहां कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, कि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए। और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाए नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के
1: जी
0: हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है या फिर डिटॉल वगैरह उस पर
1: जी
0: लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि वो कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: जी और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे। या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहनिए, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है, तो उस जगह को खुजलाए नहीं। अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
0: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम के कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रही हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारियो मैं और कल्याणी है, दो बच्चे है मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे पढ़ के, लग गया हम भी।
0: अच्छा चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
0: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
0: कराइए।
2: हेलो मैडम।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: मीरा बाई है मेरा नाम।
0: अरे मीरा बाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा बाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा बाई के ये भजन सुनिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते, खेती में भी काम करते।
0: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव यह है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास?
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है।
0: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको?
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते, चाय पीते।
0: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, शरीर और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी जी, बस में लगाए तन पर, तहते जिनको शंकर।

0: भंग के प्याले कहते हैं डमरू वाले।
1: बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठा कर, है ना। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप?
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में हमें। हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना?
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए पहनने के लिए, बता सकती हैं आप?
1: जी यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला। जी
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना
1: तो
0: सुनेंगे आप?
1: मुझे गाना सुना दीजिए लता दीदी की आवाज में। जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है सावन के झूले पड़े।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान, है
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
0: तो अभी आप कावा पीते हैं?
1: कभी कभी पीते हैं, तो वही तप वगैरह बुखार उस पे भी हम

0: वो यूज करते हैं तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
1: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
0: रूटीन का खाना है चावल दो टाइम, और दिन में दो चाय हम बनाते हैं, लेफ्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
1: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं?
0: नून चाय।
1: नून चाय ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
0: ये गुलाबी बनते हैं। इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाए थे।

0: बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले ये हम समावार में बनाए थे, कश्मीरी समावार है ना, उसमें बनाए थे। तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाए थे, तो ऐसा नहीं होते ये भी।
1: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना।
0: बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
1: बिल्कुल सुनते हैं,
0: मजा आता है।
1: बिल्कुल, बताइए गाना बताइए।
0: मैडम, हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, पंच सुर में गाते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
0: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है।
1: ठीक है,
0: 4 महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन। और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हैं उस जगह पर।
1: अच्छा,
0: कई कई किसान करते हैं वैसी खेती।
1: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
0: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
1: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना, कोई न कोई फसल रहती ही है।
0: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना, उप करेंगे।
1: अच्छा चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
0: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
1: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
0: मजदूर भी रहते हैं दीदी, उतना बैठा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती है।
1: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
0: हाँ, कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
1: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा
1: तो एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ जी, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी?
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं।
0: क्या फसल बोई आपने अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है।
0: फिर

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है भाई? आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन का भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस

0: करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ, और मैं भी उसमें शामिल होता हूँ।
0: आप भी गाते हैं देशगान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए का की
1: जय हो स्तुते श्री महान मंगले वास्पदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गाना है, मजसी ने परतमातु भूमिला सागरा प्राण तरमला तरमला सागरा सागरा।
0: बहुत अच्छा।
1: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
0: जी।
1: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
0: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश,
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनीतपुर आसाम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव आसाम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये।
0: जी जी,
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनीतपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा,
1: आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्की से बारिश आते है।
0: हाँ, और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इसे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: आपने। कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी, तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: हमारे असम के सबसे ज्यादा सोनीतपुर में ज्यादा फेमस है, जिसका मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं, ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं, तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी।
0: तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी जी जी, वीर जरा फिल्म का है ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से। हाँ
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका
1: हाँ
0: नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरे मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है, वो उन्होंने क्या सोच के रखा है पता नहीं, मेरे को तो बस यही पता है कि मेरे मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गई जरूर समझूंगी क्या क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे
1: हाँ
0: एक बात
1: मैम,
0: बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो, कर्मा
0: कौन सा?
1: फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्क्रीन निकाली थी, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम
1: हाँ मैम,
0: जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम
1: हाँ मैम,
0: जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए
1: हाँ मैम
0: हमारा।
1: बिल्कुल, ईमानदारी रहना चाहिए और सब
0: हाँ,
1: लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना
1: हाँ
0: बचपन
1: मैम,
0: याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम,
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: गाना फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है सभी श्रोताओं का।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश हाँ। होना बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, वो सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर जी। आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है?
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी, खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं
1: जी।
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: फरमाइश कर रही तुम? आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता, सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी। कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: तो पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है। तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना, और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रम में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो, बाद में और टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्गन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है। अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरी 77 अभी पूरे होने वाले हैं
0: 77। इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना?
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ,
0: बहुत
1: मैं ऐसा
0: अच्छा।
1: नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ
0: लेकिन
1: ऐसा।
0: इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले तो होते।
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो। आपकी पसंद का गीत सुनते
1: सलील
0: हैं।
1: चौधरी का संगीत है,
0: सलील
1: विमल
0: साहब
1: रॉय की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है।
0: जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी, मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है। मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो है रिकॉर्ड कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड को स्टे करता हूँ, उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन, उनके ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा

0: कलेक्शन है।
1: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना जा सकता है निडिल लगा के?
0: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
1: क्या बात है, चलिए
0: का काम चल रहा है सारा।
1: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आप गिरधारी जी? आप
0: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी प्रोग्राम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी युववाणी होस्ट और दोस्त पिंकी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी आज की चर्चा और ढेर सारी जानकारी के साथ ही कराएंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन अंगदान उस अंत को एक नई शुरुआत बना देता है। अंगदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इंसानियत का सबसे बेहतरीन स्तर है, जिसके एक फैसले से किसी डूबते हुए परिवार को तिनके का सहारा ही नहीं बल्कि पूरा जीवन दान दे देता है। तो आइए दोस्तों, इसी संबंध में हमारी आज की चर्चा का विषय है युवा शक्ति का महादान अंगदान। अंगदान किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वस्थ और उपयोगी अंगों या ऊतकों को जरूरतमंद मरीजों के उपचार या प्रत्यारोपण के लिए दान करना। अंगदान जीवित रहते हुए भी कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है और मृत्यु के बाद भी निर्धारित चिकित्सकीय नियमों के अनुसार अंगदान संभव है। अंगदान से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। यह समाज में मानवता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करता है। इसमें युवाओं की जागरूकता से अंगदान से जुड़ी गलत धारणाओं और भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। यदि युवा स्वयं सही जानकारी प्राप्त करे और अपने परिवार तथा मित्रों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करे, तो जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद लाई जा सकती है। इसलिए हमें अंगदान के प्रति जानकारी और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज अंगदान दिवस के मौके पर हम सभी अंगदान का संकल्प लें, मानवता की मिसाल बने, क्योंकि किसी के लिए आपका अंग, आपके अंग का दान उसके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। तो साथियों, आप अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए जागरूक बने और मानवता के इस महान कार्य को आगे बढ़ाएं। चर्चा हम आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले दोस्तों वक्त हो गया है फिल्मी गीत संगीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जो लिया गया है फिल्म फन्नी खां से, जिसमें आवाज दी है सुनिधि चौहान ने।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म फन्ने खां से सुनिधि चौहान की आवाज में ये बेहद प्यारा गीत। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले के
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुप

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी कलाई होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि

0: कि वर्तमान में बदलाव लाने वाली शक्ति भी है। उनकी नई सोच, ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान और कुछ नया करने की इच्छा आज के युवाओं को परिवर्तन का संवाहक बनाती है। इसी संबंध में हमारी चर्चा का अगला विषय है परिवर्तन के संवाहक आज का युवा। दोस्तों, यदि युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करे तो समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव तेजी से ला सकता है। बात करें आज के युवाओं की भूमिका की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवा शिक्षा और ज्ञान से स्वयं को सक्षम बनाने के साथ समाज में जागरूकता फैला सकते हैं और डिजिटल तकनीक, विज्ञान और नए विचारों के माध्यम से समस्याओं के नए समाधान खोज सकते हैं। इसके साथ ही युवा नए व्यवसाय और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और सामाजिक जागरूकता जैसे स्वच्छता, समानता, शिक्षा, बाल अधिकार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा अनुशासन, ईमानदारी, जिम्मेदारी और देश के प्रति सकारात्मक सोच अपनाकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। साथ ही जरूरतमंदों की सहायता और विभिन्न सामाजिक अभियानों में भाग लेकर समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए आज हम सभी युवा मिलकर संकल्प लें कि अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए करेंगे, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी परिवर्तन आगे बढ़ेगा और जब युवा बदलेगा तभी देश बदलेगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करके परिवर्तन के संवाहक बनने में अपना योगदान दे सकते हैं। वक्त हो गया है एक बार फिर ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सुनिए सुनिए सुनिए, 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।
0: दोस्तों, आज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, आज का युग तकनीक और तेजी से बदलती दुनिया का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सोशल मीडिया ने युवाओं के लिए ज्ञान और अवसरों के नए द्वार खोले हैं। लेकिन इन सुविधाओं के साथ समय का सही उपयोग, सोशल मीडिया की लत, साइबर सुरक्षा, मानसिक दबाव और रोजगार जैसी कई चुनौतियां सामने आई। तो इसी संबंध में दोस्तों सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है तकनीक के दौर में युवा और आज की चुनौतियां, जिसके वार्ताकार हैं अशोक शुक्ला।
2: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो युवाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना उसकी दिनचर्या अधूरी जान पड़ती है, और वह है इंटरनेट का इस्तेमाल। जी हाँ, युवा जब सुबह आंखें खोलता है तो मोबाइल स्क्रीन के साथ, और रात में जब आंखें बंद करता है तो भी मोबाइल स्क्रीन के साथ। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि इंटरनेट हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। इंटरनेट आज हमारी लाइफलाइन बन गया है। बात चाहे असाइनमेंट की हो, रील्स की हो, मीम्स या वर्चुअल गेम्स की, इंटरनेट ने हमें फास्ट बनाया, स्मार्ट बनाया और ग्लोबल बनाया है। लेकिन जब हर चीज आसानी से हासिल हो जाए तो बॉडी और माइंड भी बोलते हैं, भाई जरा हमें भी टाइम दे दो। आज एक छोटा सा वीडियो आपको रातों रात स्टार बना सकता है। आज एक गांव का छात्र भी ऑनलाइन क्लास के जरिए देश दुनिया के बड़े शिक्षकों से पढ़ सकता है। दूरियां अब नजदीकियों में तब्दील हो गई हैं। इंटरनेट ने जहां एक तरफ शिक्षा को आसान बनाया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को सुलभ किया, वहीं दूसरी ओर नौकरी और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खोले। आज का युवा अब आसानी के साथ फ्रीलांसिंग कर रहा है, ऑनलाइन स्टोर खोलकर तमाम तरह के बिजनेस शुरू कर रहा है और अपनी प्रतिभा और ज्ञान के साथ पूरी दुनिया तक पहुंच बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा पहलू भी है। सोशल साइट्स का प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, यहाँ हर कोई खुश दिखता है, परफेक्ट दिखता है, और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन। उसके पास इतना सब है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं, यहीं से युवा खुद से सवाल करने लगता है। और कई

और आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। हालांकि उसे मालूम होता है कि ये सब वर्चुअल दुनिया की एक झलक मात्र है। यह सच जानने के बाद भी ना चाहते हुए भी उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह भ्रमित हो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। दोस्तों, आजकल एक शब्द बहुत चलता है, आपने भी सुना होगा, वायरल। कोई भी मैसेज, कोई वीडियो, कोई अफवाह बस शेयर और देखते देखते हजारों लोगों तक पहुंच। कभी बीमारी का डर, कभी नकली इलाज, कभी किसी घटना को बड़ा चढ़ा कर दिखाना, और हम बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। युवा वर्ग बिना जांच पड़ताल ऐसी खबरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है और नतीजा भ्रम, डर और तनाव का शिकार बन जाता है। याद रखिए दोस्तों, हर वायरल चीज सच नहीं होती। सोशल मीडिया देखिए पर खुद से तुलना मत कीजिए।

भ्रम, डर और तनाव का शिकार बन जाता है। याद रखिए दोस्तों, हर वायरल चीज सच नहीं होती। सोशल मीडिया देखिए पर खुद से तुलना मत कीजिए। हाँ, वायरल खबर शेयर करने से पहले फैक्ट चेक जरूर कीजिए। पढ़ाई, खेल, दोस्त, परिवार सबको पर्याप्त समय दीजिए। अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक यानी ऑनलाइन गेमिंग की। ऑनलाइन गेमिंग का नाम लेते ही कई चेहरे खिल उठते हैं। बस एक मैच और मैच के बाद फिर मैच, और बॉडी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में। रात भर गेम, सुबह नींद अधूरी, और अगले दिन क्लास में ध्यान शून्य। शुरुआत होती है बस 10 मिनट खेलने से, और कब 3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन खेलों की कोडिंग और इनका एल्गोरिदम कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि खिलाड़ी घंटों स्क्रीन से नजर नहीं हटाते। दोस्तों, यही है गेमिंग की लत या एडिक्शन। रिजल्ट, नेक पेन, बैक पेन और गैर जरूरी बढ़ता मोटापा। आत्मविश्वास कम होता है, तनाव बढ़ता है, अकेलापन महसूस होने लगता है। यह मानसिक सेहत के लिए खतरनाक संकेत है। गेम तो जीत गया दोस्तों, लेकिन हेल्थ हार गई। भाई, ये तो कहीं से भी फेयर डील नहीं है। डॉक्टर्स भी साफ चेतावनी देते हैं, लगातार बढ़ते स्क्रीन टाइम और गेमिंग से युवाओं में आंखों की रोशनी कम हो रही है। पर्याप्त नींद न लेने के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ रहा है। जरूरी है स्क्रीन से ब्रेक लेना, क्योंकि शरीर जब रिचार्ज ही नहीं हुआ तो माइंड कैसे चलेगा भाई। दिन में सीमित समय ही मोबाइल और गेमिंग के लिए रखें, और शरीर को भी उतना ही समय दें। हाँ, अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर ट्रैकर जरूर लगाएं, ताकि समय समय पर स्क्रीन टाइम पर नजर पड़ती रहे कि कितना समय हमने सोशल साइट पर बिताया। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार परिवार के साथ बिना मोबाइल के कब बैठे थे? आज हम ऑनलाइन तो हैं, लेकिन ऑफलाइन रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। रूम में सब साथ हैं, मगर सब अपनी अपनी स्क्रीन में खोए हैं। यह तकनीक नहीं, एक चेतावनी है। दोस्तों, इंटरनेट को हटाना समाधान नहीं है, समाधान है इसका संयम के साथ इस्तेमाल करने का, बैलेंस बनाने का। और अब हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। जी हाँ, आपके मोबाइल से भी। दोस्तों, जरा सोचिए, पहले महीने की शुरुआत में तनख्वाह या पॉकेट मनी आती थी तो अंदाजा रहता था कि कहाँ कितना खर्च हुआ, और आज UPI है, वॉलेट है, डेबिट क्रेडिट कार्ड सेव्ड है, और महीने के अंत में सवाल उठता है, पैसा कहाँ गया? इंटरनेट ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया। बस मोबाइल खोला, एक ऑफर दिखा, 50% डिस्काउंट, आज आखिरी दिन, और बिना सोचे ऑर्डर कन्फर्म्ड। जरूरत हो या ना हो, कपड़े, गैजेट्स, जूते सब घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यही आसान सुविधा धीरे धीरे बजट बिगाड़ देती है। जब हम नगद पैसे देते थे तो खर्च का एहसास होता था, लेकिन डिजिटल पेमेंट में ना नोट गिनने पड़ते हैं, ना जेब खाली दिखती है। छोटे छोटे खर्च, कॉफी, फास्ट फूड, रिचार्ज रोजाना होते हैं, और महीने के अंत में वो छोटे खर्च एक बड़ी रकम बन जाते हैं। आज युवाओं में घर का खाना छोड़कर ऑनलाइन फूड मंगाने की आदत सी बन गई है। थोड़ी भूख लगी, ऐप खोला और ऑर्डर किया। यह सुविधा समय तो बचाती है, लेकिन पैसा नहीं। नतीजा, बजट गड़बड़ और सेहत भी। सोशल मीडिया पर हर कोई नई चीजें दिखा रहा है, नया फोन, नई नई ड्रेसेस। ऐसे में चंचल मन सोचना शुरू कर देता है, जब सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। यहीं से शुरू होती है दिखावे की दौड़। EMI पर बड़ी बड़ी खरीदारी, फिर हर महीने किश्तों को चुकाने का टेंशन, और बजट पीछे छूट जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स और OTT प्लेटफॉर्म मनोरंजन देते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ाते हैं। इन ऐप खरीदारी, मंथली सब्सक्रिप्शन, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने कटता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इंटरनेट समस्या नहीं है, समस्या है नियंत्रण के बिना उपयोग। अगर युवा खर्च का हिसाब रखें, जरूरत और चाहत में फर्क समझें, हर ऑनलाइन ऑफर पर ना जाएं, और हाँ, बचत को प्राथमिकता जरूर दें, तो इंटरनेट बजट बिगाड़ने वाला नहीं, सहायक बन सकता है। आज का युवा वर्ग डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन चुका है।
लेकिन जितनी यह सुविधा आसान

0: आसान है उतनी ही जरूरी है इसमें सावधानी बरतना। सबसे जरूरी बात, अपना यूपीआई पिन और ओटीपी किसी के भी साथ शेयर न करें। कई बार ठग लोग बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं और आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर आपका पिन या ओटीपी नहीं पूछता। डिजिटल पेमेंट के लिए एप्स हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें और पब्लिक या फ्री वाईफाई पर डिजिटल पेमेंट करने से बचें। इससे आपकी निजी जानकारी हैक होने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, QR कोड स्कैन करने से पैसे जाते हैं, आते नहीं। इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर QR कोड स्कैन करने से पहले जरूर सोचें। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें जरूर, लेकिन स्मार्ट तरीके से और पूरी सावधानी के साथ। जब चर्चा इंटरनेट और उसके इस्तेमाल की हो रही हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन डरिए मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ को आसान बनाने वाला एक स्मार्ट टूल है। दोस्तों, AI कोई कल की खोज नहीं है, लेकिन आज AI आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं बल्कि सपोर्ट कर रहा है। सोचिए जरा, सुबह अलार्म किस टाइम बजे, ये AI तय करता है। कौन सा रील आपको पसंद आएगा, ये AI जानता है। और किस रास्ते से आप कॉलेज जल्दी पहुंचोगे, ये भी AI बताता है। मतलब साफ है दोस्तों, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आपकी लाइफ में है, चाहे आप उसे जाने या न जाने। कॉलेज स्टूडेंट के लिए AI तो एक गजब का पावरफुल टूल है। असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, एग्जाम का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट और साथ में सोशल लाइफ भी। अब सोचिए, अगर एक ऐसा टूल जो आपके टॉपिक को आसान भाषा में समझा दे, नोट्स को शॉर्ट और क्लियर बना दे, पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखा दे और आपका टाइम बचा दे, तो क्या आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे? यही काम करता है AI। इसके अलावा ये आपकी मदद कर सकता है पढ़ाई का टाइम टेबल सेट करने में, कौन सा काम पहले करना है यह तय करने में, फोकस बढ़ाने में, यानी कहने का मतलब कम काम और ज्यादा आउटपुट। दोस्तों, आज कंपनियां डिग्री से ज्यादा स्किल और स्मार्टनेस देखती हैं। इस स्मार्ट टूल के साथ आप नई स्किल सीख सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, रिज्यूमे बेहतर बना सकते हैं, अपने फील्ड के नए ट्रेंड्स समझ सकते हैं। कुल मिलाकर AI आपकी क्रिएटिविटी का दुश्मन नहीं, पार्टनर है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का मतलब ये कतई नहीं है कि खुद सोचना बंद कर दें, हर जवाब बिना चेक किए मान लें और पूरी तरह मशीन पर निर्भर हो जाएं। ये जरूरी नहीं कि AI द्वारा निकाला गया निष्कर्ष हमेशा ही सही हो, यह कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। याद रखिए, AI एक टूल है, टीचर नहीं, मददगार है, मालिक नहीं। मगर असल बात यह है कि आज का स्टूडेंट वही आगे बढ़ेगा जो टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, उसे समझे और सही तरीके से इस्तेमाल करे। AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन AI जाने वाला स्टूडेंट जरूर आपसे आगे निकलेगा। तो दोस्तों, AI कोई जादू नहीं, बल्कि आपके हाथ में एक स्मार्ट टूल है। इसे इस्तेमाल कीजिए सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल और कला, हर क्षेत्र में भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आप देश का भविष्य हैं। आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपका समय बहुत कीमती है। यही तय करेगा हमारा भविष्य और हमारे देश का समग्र विकास। यही समय की पुकार भी है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था तकनीक के दौर में युवा और आज की चुनौतियां, जिसके वार्ताकार थे अशोक शुक्ला। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: ये देख कैसे?
3: हैप्पी बर्थडे बाय।
2: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में।

दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन से इतिहास बनाते हैं और कुछ अपने विचारों से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही प्रेरणा स्रोत और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह थे। दोस्तों, भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारी और विचारक थे। उनका जीवन साहस, देश प्रेम, त्याग और स्वतंत्रता के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक था। भगत सिंह बचपन से ही देश की गुलामी और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने युवावस्था में ही देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन युवाओं को सिखाता है कि देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी, जागरूक सोच, साहस, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी देशभक्ति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं थी, वे पढ़ने, सोचने और समाज में बदलाव की आवश्यकता पर भी जोर देते थे। भगत सिंह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएं, ज्ञान प्राप्त करें और समाज व राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी निभाएं। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंह के बारे में। वक्त हो गया है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जो लिया गया है फिल्म केसरी से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म केसरी से बी प्राक की आवाज में ये गीत। साथियों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हमारी पहचान एकता गौरव और देश के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाते हैं। तिरंगा राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश की समृद्ध विरासत और मूल्यों से जुड़े हैं। इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन देश के प्रति हमारा दायित्व केवल राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है राष्ट्रीय ध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, देश की एकता शांति और भाईचारे को मजबूत करने में योगदान देना। सच्ची देशभक्ति केवल राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने में नहीं, बल्कि अपने नागरिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। जब हम राष्ट्रीय प्रतीकों के छोटे छोटे दायित्वों को जिम्मेदारी से निभाते हैं तो हम एक मजबूत स्वच्छ और बेहतर भारत के निर्माण में योगदान देते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको राष्ट्रीय प्रतीक और हमारा नैतिक दायित्व के बारे में। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारा कार्यक्रम रोज शाम 5 बजे न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से

सुन सकते हो और अपने सुझाव हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज @AkashvaniJhansi के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी अपनी दोस्त पिंकी को। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा।
1: विविधा

0: 내비드하.
1: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने ध्वनि मित्र राजेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो विषय, उनके बारे में सुन लीजिए। आज के हमारे विषय हैं, पहला विषय है जुग जुग जियो अभियान, अंगदान करो जुग जुग जियो। इस विषय पर हमारी आपसे होगी चर्चा, साथ ही एक भेंटवार्ता भी हम अंगदान विषय पर लेकर के आए हैं, जिसका विषय है अंगदान महादान, प्रक्रिया, नियम और भ्रांतियां। इस विषय पर आशीष अग्निहोत्री, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी से उषा अग्रवाल की बातचीत, और इस बातचीत की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। साथ ही एक ध्वज एक संकल्प, हर घर तिरंगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आज अंगदान जुग जुग जियो अभियान विषय पर। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने सोल में भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त 2026 के अवसर पर देशव्यापी जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की है। यह एक वर्ष तक चलने वाली एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना और जीवन बचाने के लिए इस कार्य को बढ़ावा देना है। अभियान के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोल में भारतीय अंगदान दिवस पर यह कार्य शुरू किया गया। उद्देश्य यदि हम कहें तो अंगदान के प्रति फैली झिझक या मिथकों को दूर करना और जन जागरूकता को बढ़ाना। साथ ही विशेष यदि बात करते हैं अंगदान विषय पर, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत अब किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधा को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही अंगदान एक महादान है जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। तो आप भी आगे आएं और अंगदान का संकल्प लें। तो ये था जुग जुग जियो अभियान विषय पर, अंगदान करो जुग जुग जियो विषय पर हमारा आपसे चर्चा, हमारी चर्चा। और अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, अंगदान महादान, प्रक्रिया, नियम और भ्रांतियां। इस विषय पर आशीष अग्निहोत्री, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी से उषा अग्रवाल की बातचीत, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अंजलि कुमारी। तो लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, जीवन अनमोल है, लेकिन उससे भी अधिक अनमोल है किसी बुझती हुई जिंदगी को नया चिराग देना। हमारे समाज में रक्तदान को तो महान माना ही गया है, पर जब बात अंगदान की आती है तो सही जानकारी के अभाव, झिझक और तमाम सामाजिक भ्रांतियों के कारण लोग पीछे हट

0: जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हर साल हजारों लोग केवल इसलिए अपनी जान नहीं गंवा देते क्योंकि उन्हें समय पर कोई दाता नहीं मिल पाता, बल्कि एक अधूरी जानकारी के रहते वो अपना जीवन गंवा देते हैं। अंगदान की प्रक्रिया क्या है, इसके नियम क्या हैं और हमारे बीच फैली भ्रांतियों का सच क्या है, इसी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष अग्नोत्री जी। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार।
0: स्वागत है आपका आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है अंगदान महादान। एक चिकित्सक के नजरिए से अंगदान की क्या परिभाषा है और आज के समय में इतनी बड़ी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है, कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अंगदान वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवित या मृत व्यक्ति किसी दूसरे गंभीर रूप से बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अपने स्वस्थ अंगों का या ऊतकों को दान करने की स्वेच्छा से अनुमति देता है। भारत में अंगदान की प्रक्रिया या तो जीवित रहते हुए भी की जा सकती है या मृत्यु विशेषकर ब्रेन डेड होने के बाद भी इसको किया जा सकता है।
0: वेरी गुड। यानी कि ब्रेन हमारा डेड हो जाए उसके बाद भी अंगदान की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं।
1: जी,
0: चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अगला डॉक्टर साहब एक प्रश्न है कि अक्सर जो आम श्रोता हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं, या शरीर का हर हिस्सा दान हो सकता है, या इसके कुछ निश्चित नियम हैं। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए।
1: इसमें चिकित्सीय मानदंड होते हैं।
0: जी,
1: गुर्दे, यकृत, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय, आंत तथा कॉर्निया आदि दान किए जा सकते हैं।
0: जी,
1: हर व्यक्ति हर अंग को दान नहीं कर सकता है।
0: जी,
1: क्योंकि इसके अपने चिकित्सीय मापदंड और मानदंड होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब आपने कि जो आपने जिन अंगों का नाम लिया है उन अंगों का दान किया जा सकता है, लेकिन वो भी चिकित्सीय परीक्षण के बाद।
1: जी,
0: वेरी गुड डॉक्टर साहब। आगे हम जानना चाहेंगे कि जीते जी अंगदान करने और मृत्यु के बाद अंगदान करने में क्या अंतर है, दोनों की चिकित्सकीय शर्तें क्या होती हैं?
1: जीवित व्यक्ति कुछ अंग का हिस्सा, जैसे एक गुर्दा या यकृत का हिस्सा दान कर सकता है।
0: जी,
1: लेकिन मृत्यु के पश्चात हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे और अन्य ऊतक, जिसमें ऊतक में बेसिकली कॉर्निया, ये सब दान किया जा सकता है और दोनों की अलग अलग चिकित्सीय शर्त मापदंड होते हैं।
0: जी, अच्छा, अगला प्रश्न डॉक्टर साहब श्रोता ये जानना चाहते हैं कि अंगदान को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, जैसे अगले जन्म में अंग गायब रहेंगे या अंग निकालने से शव विकृत हो जाता है। एक प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारी के रूप में आप इन मिथकों को कैसे खारिज करते हैं?
1: देखिए, ये भ्रांतियां बिल्कुल गलत है।
0: जी,
1: अंगदान के बाद शरीर का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है।
0: जी,
1: और शरीर को विकृत नहीं किया जा सकता। अंगदान एक सुरक्षित वैज्ञानिक एवं कानूनी प्रक्रिया है।
0: जी,
1: जिसके अपने मापदंड होते हैं, अपने मानदंड होते हैं और उसी कानूनी सुरक्षित वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही अंगदान किया जाता है।
0: जी, बहुत बढ़िया, आपने एकदम चीजों को स्पष्ट कर दिया। जो भ्रांतियां हम लोगों के मन में व्याप्त हैं वो आपके इस बातचीत से और इस जानकारी से हमारे श्रोताओं की दूर होंगी। डॉक्टर साहब, हमारा अगला जो एक अंदर से जो जागरूकता है या जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर क्या कानूनी नियम हैं? यह किस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि अंग सही और जरूरतमंद मरीज तक ही पहुंचे?
1: देखिए, भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण एक छोटा एक्ट होता है, टीएचओटीए एक्ट है, इसके तहत ही नियंत्रित होता है।
0: जी,
1: अधिकृत संस्थाएं अंगों के आवंटन और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की निगरानी करती हैं, जिससे अंग जरूरतमंद मरीज तक तरीके से पहुंच सके।
0: जी,
1: इसी के लिए इसका प्लेज रजिस्ट्रेशन, डिकीज डोनेशन ये सारी प्रक्रिया कानून

0: सामान्य प्रक्रिया होती है और इसी एक्ट के अंतर्गत स्वस्थ अंगों का आवंटन किया जाता है।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, क्या है कि जितनी भी अपनी जो प्रोसेसिंग है उसके बाद ही अंगों का प्रत्यारोपण किया जाएगा।
0: जी, जी।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, अगली हमारी क्वायरी है कि यदि हमारा कोई श्रोता आज ही अंगदान का संकल्प लेना चाहे तो उसकी व्यवहारिक प्रक्रिया क्या है, क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल या डोनर कार्ड की व्यवस्था है?
0: देखिए, व्यक्ति यदि आज की दृष्टि में अंगदान करना चाहता है तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट यानी नोटा के माध्यम से ऑनलाइन अंगदान का संकल्प ले सकता है। इसका प्लैच रजिस्ट्रेशन होता है
1: जी।
0: डोनर कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध रहती है और व्यक्ति अपने परिवार को भी इस निर्णय की जानकारी देना चाहे और चाहिए भी और दे भी देता भी है, जिसके कारण से ये प्लेज रजिस्ट्रेशन की अंगदान की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। डोनर बनने के लिए राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन जो जैसा मैंने बताया नोटा, ये एक आधिकारिक पोर्टल है। ऑनलाइन फॉर्म इसमें उपलब्ध रहते हैं, इसमें भरकर संकल्प पत्र लिया जा सकता है
1: जी।
0: और इसमें परिवार की सहमति भी उसमें शामिल होनी चाहिए, यह भी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत।
1: ओके डॉक्टर साहब, अगली क्वेरी है कि जैसे डोनर को अंगदान के विषय में जो आपने पहले ही हमें इसका जवाब दिया है, लेकिन चलिए मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपका आंसर चाहूंगी कि जैसे डोनर को अंगदान के विषय में परिवार को इस बारे में बताना कितना जरूरी है, क्या अंतिम समय में परिवार की सहमति अनिवार्य होती है?
0: देखिए, परिवार को पहले से अंगदान की इच्छा बताना बहुत जरूरी होता है और मृत्यु के समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही परिवार या अधिकृत व्यक्ति की सहमति लेना आवश्यक होती है। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, विशेषकर ब्रेन डेड होने पर हम मृत्यु को घोषित कर देते हैं, तो और पहले से प्लेस संकल्प नहीं होता है तो परिवार का व्यक्ति ही उसका प्लेस रजिस्ट्रेशन करता है और उसका अंगों का डिक्रीज डोनेशन की प्रक्रिया करके पूर्ण करके उसको अंग को दान किया जा सकता है।
1: जी हाँ, तो परिवार की सहमति आवश्यक है और उनकी सहमति से ही डोनर जो भी डोनेट कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा हमारे मन में एक और प्रश्न आ रहा है वो कि डॉक्टर साहब, अंग दान में मेडिकल मूल्यांकन क्या है?
0: देखिए, मेडिकल मूल्यांकन का अर्थ है डॉक्टरों की जांच। डॉक्टर ये जांच करते हैं कि अंग स्वस्थ है या नहीं है और मरीज के शरीर से मैच करते हैं या नहीं।
1: जी,
0: सर्जरी यानी अंग निकालना, विशेषज्ञ सर्जनों की टीम के द्वारा ऑपरेशन करके सुरक्षित तरीके से अंगों को निकालना, ये बेसिकली मेडिकल मूल्यांकन की परिधि में आता है। कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप कोई अंग किसी को डोनेट कर रहे हैं तो उससे मैच कर रहा है और वो अंग स्वस्थ है कि नहीं। कभी कभी ये होता है कि हमने किसी को अपने एक लीवर का पार्ट दिया जीवित रहते हुए, लेकिन पहले उसका वो उससे मैच होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तभी वह दूसरे व्यक्ति के शरीर में तरीके से मतलब पूरी तरीके से कार्य सिद्ध होगा।
1: जी बिल्कुल,
0: इसीलिए ये मेडिकल मूल्यांकन आवश्यक होता है और हर केस में ये मेडिकल मूल्यांकन किया जाता है।
1: जी बिल्कुल, मतलब कहने का आशय ये है डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने किसी का कोई बॉडी का पार्ट लिया
0: जी
1: और फिर हमें किसी दूसरी बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट करना है
0: जी,
1: तो हमें ये देखना है कि जो हम पार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो उस एक्सेप्टर के लिए ओके है या नहीं है।
0: हाँ, बिल्कुल सही, उसको उसके शरीर को एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: हाँ जी, तभी वो सफल होगा,
0: तभी वो सफल प्रक्रिया होगी जी।
1: डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक क्वेरी और भी है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 इयर्स का है, ठीक है डॉक्टर साहब, वो अपना बॉडी का कोई पार्ट डोनेट करना चाहता है, लेकिन जो हमारा रिसीवर है उसकी उम्र मान लीजिए 30-35 साल है या 40 साल है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑर्गन्स में क्या प्लस और माइनस हो सकता है?
0: देखिए, जैसा आपने कहा कि कई केसेस में क्या होता है कि अगर डोनर की एज अत्यधिक है
1: जी,
0: तो अंग की जो स्वस्थ मात्रा है उतनी नहीं रहती है
1: जी, नहीं रहती है
0: ना, लेकिन फिर भी उस वो यही मैंने बताया कि मेडिकल मूल्यांकन जो होता है
1: जी,
0: उस मेडिकल मूल्यांकन के माध्यम से हम ये जांच कर लेते हैं या कोई भी डॉक्टर जांच कर लेता है कि इससे शरीर इसके इस

0: की क्या स्थिति है और कितना ये सही ढंग से काम कर सकता है।
1: हाँ जी,
0: इसीलिए मेडिकल मूल्यांकन किया जाता है और वो दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष के व्यक्ति का लिवर स्वस्थ रहता है और उसको दान किया जा सकता है। बस जो रिसीवर है उस पर वो डोनर का अंग जो है एक्सेप्टेंस रहे उसकी।
1: जी हाँ, कि मतलब डोनर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं।
0: हाँ।
1: और उसके बाद उसकी लाइफ अच्छे से चल पा रही है कि नहीं, है ना डॉक्टर साहब?
0: जी,
1: ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हम लोगों को। आगे डॉक्टर साहब एक मन में और प्रश्न आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे मृत्यु के बाद किस तरीके से अंगदान हो सकता है?
0: देखिए, इसको हम कहते हैं डिक्रीज्ड डोनेशन। मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात यदि परिवार की सहमति है
1: जी
0: और परिवार चाहे
1: जी
0: तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर करके संकल्प लेकर के पूरे परिवार की सहमति के साथ
1: जी
0: अपने जो डिक्रीज्ड है उसका डोनेशन कर सकता है। लेकिन परिवार की पूर्ण सहमति होनी चाहिए उसमें
1: जी।
0: और वो नोटों में जाकर के जो प्रत्यारोपण संगठन है होता है
1: जी,
0: नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट, उसमें जाकर के आधिकारिक पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म भर करके अपना डिक्रीज का डोनेट कर सकता है। शरीर को भी डोनेट कर सकता है, अगर अंग के अतिरिक्त पूरे शरीर को डोनेट किया जा सकता है।
1: ओके
0: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने बॉडी के पार्ट्स को डोनेट किया आफ्टर डेथ
0: जी,
1: ठीक है, तो क्या उसको तुरंत ही कोई रिसीवर को उसको देना होगा या फिर हम कहीं उसको स्टोर कर सकते हैं उस पार्ट को?
0: बिल्कुल, ये इसको स्टोर किया ही जाता है। इसे कहते हैं एलोकेशन।
1: एलोकेशन,
0: हाँ, अंग आवंटन। इसकी एक प्रतीक्षा सूची होती है
1: जी,
0: वरीयता क्रम के आधार पर इसको जरूरतमंद मरीज को अस्पताल में संबंधित अस्पताल में अंग भेजा जाता है। बेसिकली क्या होता है, अस्पताल जो होते हैं नोटो संगठन में अपने रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं
1: जी,
0: वहां पर अंगों किस अंग की उनको आवश्यकता है वो भी रजिस्टर्ड कराते हैं। जब एलोकेट हो जाता है और सारे अंग की वेटिंग लिस्ट बन जाती है तो वरीयता क्रम के अनुसार उस अंग को संबंधित अस्पताल में संबंधित व्यक्ति मरीज को उसको लोकेट कर दिया जाता है जी।
1: ओके। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए अंग को अपने दान कर दिया
0: जी,
1: ठीक है सर, तो उस अंग की सर्वाइबिलिटी या उस अंग का जीवन
0: जी
1: कितने दिन तक है, ये कैसे?
0: देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, ये रिसीवर के इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है
1: जी।
0: अगर रिसीवर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है
1: जी
0: और जो डोनर ने जो भी अंग दान किया है उसके एक्सेप्टेंस पावर उसकी ज्यादा है, अच्छी है, तो जीवन पर्यंत चलता है।
1: ओके।
0: उसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ समय बाद परेशानी आने लगती है, इसीलिए ही ये मेडिकल मूल्यांकन किया जाता है
1: जी, कि हम जो अंग का प्रत्यारोपण कर रहे हैं
0: जी
1: वो अंग किस लेवल का है ना, इसीलिए उसका पहले टेस्ट किया जाता है
0: जी।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारी यहाँ पे एक और क्वायरी जागी है, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमने किसी का बॉडी का पार्ट निकाला
0: जी,
1: ओके सर, और मैंने फिर मैं उसको कोई प्रिजर्वेटिव में रखती हूँ क्या?
0: नहीं, ये एक प्रक्रिया है मेडिकल में। डॉक्टर्स बॉडी का पार्ट निकालते हैं
1: जी,
0: उसका प्रिजर्वेशन तो आवश्यक ही है, तब उसको रखा जाता है
1: जी।
0: उसको उनका मानक होते हैं, हर अंग का अपना मानक होता है प्रिजर्व करने के लिए, उसी टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है। एक समय सीमा होती है, एक समय सीमा होती है, चूंकि नोटों में हमेशा से रजिस्टर्ड होते हैं, वेटिंग चलती है, तो बहुत ज्यादा समय तक प्रिजर्व नहीं होता है, तत्काल ही उसका एलोकेशन कर दिया जाता है।
1: हाँ जी, वही मैं सोच रही थी कि आखिर हम कितने समय तक किसी बॉडी के पार्ट को प्रिजर्व कर सकते
0: हैं? बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, वो तो तत्काल ही उसको लिया जाता है, एक समय सीमा होती है और तत्काल ही उसको एलोकेट कर दिया जाता है
1: जी। हाँ जी। और यदि एलोकेशन के लिए मान लीजिए नहीं कोई रिसीवर है, देन
0: अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया कि रिसीवर ना हो, क्योंकि मतलब जरूरतमंद इतने हैं, हर स्थान पर है और हर श्रेणी के व्यक्ति को ये सरकार ने जो शासन ने सुविधा दे रखी है, रजिस्टर्ड करके तत्काल ही उसको लोकेट कर दिया जाता है।
1: वेरी गुड डॉक्टर साहब। जो लोग अंगदान करना तो चाहते हैं लेकिन मन में थोड़ा सा डर या हिचकिचाहट है, उनके लिए आपका एक प्रेरक संदेश क्या होगा?

0: देखिए, अंगदान एक महादान है
1: जी,
0: और व्यक्ति का आपका एक छोटा सा संकल्प
1: जी
0: किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है
1: जी।
0: इसमें डर या हिचकिचाहट छोड़कर अंगदान किया जा सकता है। और मैं जितना समझता हूँ कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जिसको अपने आगे जीवन को स्थायी रूप देने के लिए अंगदान की आवश्यकता है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोगों को अंगदान जैसे महादान की चीज को बिना डर या हिचकिचाहट छोड़ करके अंगदान के लिए आगे आना चाहिए
1: जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमारी लगभग हमारी श्रोताओं की समस्त क्वायरी को पैकिफाई किया। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे श्रोताओं कि रहो ना रहो तुम, धड़केंगी धड़कने किसी और में, एक फैसला तुम्हारा कई जिंदगियां संवार देगा। आज हमारे स्टूडियो में आकर आपने अंगदान के बारे में इतनी अमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका हृदय से आभार
0: जी। धन्यवाद।
2: श्रोताओ, अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी, अंगदान महादान प्रक्रिया नियम और भ्रांतियां, इस विषय पर आशीष अग्निहोत्री उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी से उषा अग्रवाल की बातचीत, और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें किस तरह से अंगदान करना चाहिए, और सच्ची मानवता इसी में है कि हम एक अच्छे मानव बन करके अपने जीते जी ये घोषणा कर दें कि भाई हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो निश्चित ही हम अपने कुछ अंग इस दुनिया के उन लोगों को दे करके जाएंगे जो हमारे अंगों से अपने जीवन को बचाएंगे, और हमारा जीवन और उनका जीवन सुचारू रूप से चलेगा, यही हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं एक ध्वज एक संकल्प हर घर तिरंगा विषय पर। हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य नागरिकों के जो उद्देश्य है वो नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना, राष्ट्रीय ध्वज के साथ व्यक्तिगत व भावनात्मक संबंध को मजबूत करना है। यह पहल लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य और महत्व इस प्रकार है, देशभक्ति की भावना को जगाना, लोगों के दिलों में राष्ट्रीय प्रेम और गर्व की भावना को बढ़ाना, ध्वज को केवल औपचारिक न रखकर उसमें सीधा भावनात्मक रिश्ता जोड़ना, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, यानी देशवासियों को जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट करके भाईचारे को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, आपको आज का हमारा विविधा का ये अंक कैसा लगा, हमें अपने पत्रों से हमें सूचित करिएगा। अब दीजिए अनुमति अपने ध्वनि मित्र राजेश शर्मा को कार्यक्रम विविधा समाप्त करने की। नमस्कार।

0: Bibbidi-ha.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनने वाले सबरे किसान भैया बहन को और पंच भैया को अपने भैया पवन की नमस्कार। हाँ तो भैया रो देखो जैसी संजय भी गया भाई और हम अपन के बीच में आ गए अपनो कार्यक्रम लेके चौपाल। तो देखो भैया रो अपन से देखो बतकाव तो हो गई खेती किसानी को और बतकाव के संगे संगे देखो अपन को मनोरंजन भी करवा है उमदास ये देखो अपन को एक भेंट वार्ता सो सुनवा है। तो सबसे पहले देखो भैया अपन कर रहे थे बतकाव और अपन देख रहे हैं कि सभी किसान भैया ने देखो खरीफ फसलन की बुआई कर ही चुके हुए और जब खरीफ फसलन की बुआई हो जाए तो हमारे किसान भैया की देखो फसलें बढ़न लगती तो देखो हमारे खेत भी अच्छी लहलहान लगत और हमारे किसान भैया भी खुश हो जाते हैं। और अब अपन जो भी देख रहे हैं कि देखो बारिश भी अपनी ठीक ठाक हो रही है मतलब कुल मिला के अपनों काम चला जा रहा हूं जो अपनी खरीफ की जो फसलें हैं उनकी लाने। तो देखो भैया और सबसे ज्यादा हम जो भी देखते हैं और देखो पतवा भी है कि हमारे सभी किसान भैया ने बुंदेलखंड में यानी कि मूंगफली की सबसे ज्यादा खेती कराते हैं। तो इस समय अपन देख रहे हैं कि देखो जो अपने खेत हैं मूंगफली के और जब मूंगफली के खेत होते हैं और बारिश होते हैं और तो उनमें देखो खरपतवार सोई आ जाते हैं और जब खरपतवार आ जाते तो देखो भैया उसे कहा होता कि अपनी जो फसल होते उनको अपन को देखो फायदा की जगह नुकसान होने लगते हैं। तो ये बात को अपन को ध्यान रखने कि अगर अपन के खेत में खरपतवार है तो अपन निराई गुड़ाई समय से कर लेवे और जब अपन निराई गुड़ाई कर दें तो उनसे कहा हो जाता भैया जो खरपतवार है वह नष्ट हो जाता और जब निराई गुड़ाई कराते हैं तो वह खरपतवार अपने जानवर के लाने शुभ काम में आ जाते हरे चारे के रूप में। तो निराई गुड़ाई की जैसे कि हम अपन से बतकाव करें तो बुआई के 15 से 20 दिन बाद अपन को देखो पहली निराई गुड़ाई कर लेने हैं और दूसरी निराई गुड़ाई अपन को 35 से 40 दिन की बीच में अपन को करने हैं। इस समय क्या होता है भैया कि इस समय देखो खेतों शुरुआती तौर में देखो जो खरपतवार है वो आउट है और जब अपन उसे निकाल ले तो वो कम बचाते हैं तो अपन दूसरी निराई गुड़ाई करके पूरा खरपतवार अपनी जो मूंगफली की फसल है उनमें से अपन निकाल सकते हैं। और इसके संगे संगे देखो अपन को एक बात को और ध्यान रखना है कि जब अपन बुआई करते हैं फसलन की तो उस समय भी अपन को विशेष तौर पर कछु बातन को ध्यान रखना है कि जैसे हमारे किसान भैया ने इस समय मूंगफली की खेती करे हैं खरीफ में तो अपन को जो ध्यान रखना है कि जो अपन ने पिछली बार अगर अपन ने वो खेत में मूंगफली की खेती नहीं करी थी वही में अपन ने अगर करी है तो देखो उतने भी अपन को खरपतवार से कछु राहत मिल जाते कम अपन के खेतन में खरपतवार होते कैसे भैया इको मतलब हो फसल चक्र अपनावो। जब अपन फसल चक्र अपनाऊ दें फिर बदल करके अपन फसलें बोते हैं तो उतने भी देखो अपन के खेतन में खरपतवार कम होते ही। और एक चीज और हम अपन को बता दें कि घनी बुआई यानी मूंगफली के जो पौधा है उसकी देखो अपन को उचित दूरी बना के बुआई करने है और घनत्व को भी अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कैसे भैया जब अपन अच्छी तरीका से बुआई करा तो और जो नीचे के अपने खेत होते हैं खेत की जो मट्टी होते हैं वह ढक जाते हैं जमीन और जब धूप नहीं मिल पाओ खरपतवार को तो देखो भैया अपने आप दब जाते और अपनी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो सबसे पहले तो हम अपन से जो ही चाहेंगे अपन को अपने खेतन में जो फसल चक्र है उसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखने और बुआई को भी अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखने और निराई गुड़ाई तो बेसन सभी हमारे किसान भैया ने कर दी है। और जो किसान भैया ने देखो ज्यादा मूंगफली की बुआई करे हैं बिलाज अपनी जांगा जमीन में तो जो भी देखो अपन जाना तो के उतरे हमारे किसान भैया ने पूरी तरीका से निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो उस समय हमारे किसान भैया ने क्या कर रहे थे कि जो रासायनिक नियंत्रण होते उनको सहारो ले लेते तो वैसे तो हम जो ही कहो चाहे कि अपन को जैविक तरीका से अपने हाथ ही से अगर निराई गुड़ाई कर रहे थे और हाथ ही से खरपतवार निकालते हैं तो उनमें देखो भैया एक तो अपने खेतन को स्वास्थ्य अच्छा रहते अपनी मिट्टी को स्वास्थ्य अच्छा रहते और जो अपनी फसलें हैं वे भी अपनी अच्छी रहती हैं। और अपन जो तो जानते हो भैया कि अगर अपन रासायनिक दवाई को प्रयोग करते हैं तो उसे कहो तो भैया कि आज अपन ने तनक मात्रा कम डाली फिर अगली फसल पे फिर अपन ने बढ़ा दी तो बहुत बहुत आखिर में कहो तो भैया के बाद जो अपन रासायनिक नियंत्रण करते हैं वो भी देखो अपन को काम नहीं करते बाद में। तो कुल मिला के हमारे केवे को मतलब जो ही

0: कि अपन को जैविक तरीका से अपन को बिल्कुल निराई गुड़ाई करने है और वही तरीका से अपन को अपनी फसल को देखो देखने है। और देखो भैया ई के बाद हम अपन से बतकाव आगे और करते हैं। कैसे भैया बतकाव तो अपनी खेती बाड़ी से संबंधित है ही है, तो बतकाव करवे के लाने देखो हम आगे अपन से बतकाव कर रहे हैं। कैसे भैया देखो खेती बाड़ी अपन करते हैं और खेती बाड़ी के संगे संगे अगर अपन दूसरों व्यवसाय जो होते हैं वो अपनाऊ थे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो ई में हम आज अपन से बात कर रहे थे मधु बाटका की, यानी कि मधु जो मधुमक्खी होती हैं उनको पालन और प्रबंधन के बारे में। कैसे खेती तो कर ही रहे, खेती के संगे संगे अगर अपन मधुमक्खी पालन करा तो और ही अच्छी बात हो जाते है। तो इसमें हम अपन को बता देवे कि जो हमारे किसान भैया है मधुमक्खी पालन करते हैं या करबो चाहोगे तो उनको प्रबंधन करबो बहुत ही जरूरी है। कैसे भैया क्या होते हैं कि इस समय जो बरसात को मौसम चल रहा हो तो इस समय क्या होता भैया कितने जो फूल होते हैं उन्हें की कमी हो जाते हैं, और जब फूलन की कमी हो जाते हैं तो जो भोजन होते हैं मधुमक्खियों को उनको संकट पड़न लगाते हैं। जब उनको संकट पड़े तो देखो अपन को क्या करने के अपन को उनकी सुरक्षा करने देखरेख करने। और एक चीज और हम अपन को बता दें, इस समय जो हमारे किसान भैया ने मधुमक्खी को जो पालन करते हैं यानी कि मधुवाट का जो हमारे किसान भैया ने लगा रहे तो भी ध्यान रखें कि बरसात को मौसम है तो अपन को जो खेत में अगर अपन लगा रहे तो जमीन से अपन को ऊपर लगाने हैं, या तो भैया अपन स्टैंड बना के लगा सकते या भैया ईंटन को भी अपन स्टैंड बना सकते हो जिस पे अपन रख देवे, जिसे भैया क्या होते कि जो बारिश को पानी होते जो पानी बरस रहो वो उसके अंदर नहीं जा पाते। और एक चीज और अपन को बता दें कि जो अपन की छत्ता है वे सीधे खुले में अपन को नहीं रखने, उसकी बजाय अगर अपन के देखो खेत पे देखो पेड़ है, जब भैया मेड़ है तो पेड़ तो है ही है खेत पे, तो जो पेड़न की जो घनी छाया होते है उनके नीचे अपन लगा सकते हैं या भैया अपन शेड बना के भी उनके नीचे लगा सकते हैं। और एक चीज और हम अपनों को बता दें कि जब मधुमक्खी पालन अपन करो तो पेड़न को जो निचली जो शाखाएं होती हैं उनकी छटाई करते हैं, जिसमें भैया क्या होते कि जो हवा होते उनको आवागमन होते रहते और जो नमी होते बाद ही देखो सूख जाते और बाद अच्छी तरह से नमी नहीं रह पाते, जो अपनी खेतन जो अपनी मधुमक्खी पालन कर रहे उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और भैया एक चीज और हम अपन को बता दें कि अगर अपन खुले में रख रहे तो अपन को जो उनके छत्ता है घास फूस से या त्रिपाल से भैया अपन ढाक के रख सकते हो। लेकिन भैया एक जा बात को जरूर अपन को ध्यान रखने कि हवा को अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखने कि हवा को बिल्कुल आदान प्रदान बनो रहे। और एक चीज और हम अपन को बता दें कि जब अपन मधुमक्खी पालन करते हो तो बरसात के मौसम में जो कि हम पहले अपन से बतकाव कर रहे थे कि इस समय देखो फूलन की जो पत्तियां होती हैं वे कम हो जाती हैं तो मधुमक्खियों को अपन को पर्याप्त पराग और मकरंद नहीं मिल पाता है। तो इसके लाने अपन को क्या करने को जो अपनी मधुमक्खी है उनको अपन को देखत रहने, और इसके लाने इस समय अपन किसान भैया रो चीनी और पानी को गाढ़ो से घोल बना के जी अपन कृत्रिम आहार जी कहते हैं वो नियमित रूप से देते रहे तो जो अपनी मधुमक्खी है वे भी देखो अपन को नुकसान नहीं हुआ मधुमक्खियों को और अपनों काम भी होते रहे। छत्ता को जो भंडारण होते हैं उनके भोजन की देखो अपन को लगातार अपन को जांच करते रहने हैं कि उनमें कोनो कमी तो नहीं आ रही। और भैया इसके बाद देखो हम जो सोच रहे कि देखो भैया बतकाव तो अपन आगे करें, जैसो कि हम बतकाव कर रहे थे मधुमक्खी पालन को तो कहना भैया ऐसी उमदा सी अपन को एक भेंट वार्ता सुनवा दें। वो भेंट वार्ता है भैया मधुमक्खी पालन आवश्यक उपकरण एवं व्यवसाय का उत्तम पर्याय। इसमें देखो भैया डॉक्टर उषा जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय किसी विश्वविद्यालय झांसी से हैं और इनसे बतकाव कर रहे राकेश भैया, तो देखो भैया हमने जो बताओ सो बताओ और डॉक्टर साहब का कछु बता रहे इके बारे में इके उपकरण के बारे में व्यवसाय के बारे में देखो जो सुनो और समझो और भैया मधुमक्खी पालन के बारे में अपन भी विशेष तौर पर ध्यान रखें।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको समय समय पर वैज्ञानिकों जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे वार्ता करके आपकी समस्याओं का समाधान भी करवाते रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से डॉक्टर उषा जी आई हुई हैं, हमने उनको आमंत्रित किया था। आज उषा जी हमें बताएंगे कि मधुमक्खी पालन हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं और खास तौर पर बुंदेलखंड में मधुमक्खी पालन की क्या संभावनाएं हैं, हमारे किसान भाई अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर उषा जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर उषा सहायक प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि बुंदेलखंड में मधुमक्खी पालन की क्या संभावना है। जैसा कि हम देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए आपको ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं होती है और बुंदेलखंड में जैव विविधता बहुत है।

0: उसके अनुसार आप अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन अपनाकर अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए जो मधुपेटिका जिसको हम बोलते हैं वो अपने खेतों में रख सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है उसकी पैदावार में भी बढ़त होती है, और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण है उनका भी जो प्राइस है, जो उनकी लागत है वो ज्यादा नहीं आती है, जिसको आराम से किसान भाई ले सकते हैं, खरीद सकते हैं मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण। और मधुमक्खी पालन के जो उत्पाद हैं जैसे कि शहद है, मोम है, प्रोपोलिस है और मधुमक्खी विष है, इनके औषधीय गुण हैं जिनको आप उत्पादन करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं, जिससे आप अपनी आय दुगनी कर सकते हैं।
1: कुशा जी, मधुमक्खी पालन के लिए हमारे किसान भाइयों को लगभग कितनी जगह की जरूरत होती?
0: देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए ज्यादा जो हम जगह की बात करते हैं, इसके लिए जगह की जरूरत नहीं होती। आप अपने खेतों पे भी रख सकते हैं मधुपेटिका को, अपने खेत की मेड़ों पे रख सकते हैं, और अपने घर के पास में, जो घर के पास का, जैसे कुछ लोग हैं किचन गार्डनिंग करते हैं, आप वहां पे भी रख सकते हैं। घर के बहुत पास रखने के लिए हम इसलिए मनाही करते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, मधुमक्खियां डंक मार देती हैं, तो ये चीज के लिए हम कहते हैं कि घर के एकदम पास में मत रखिए। लेकिन इसके लिए अलग से किसी जगह की जरूरत नहीं होती, आप अपने खेतों पे रख सकते हैं, और खेतों पे रखने से आपको लाभ भी होता है, आपकी कृषि की जो पैदावार है उसमें बढ़त होती है। और ये अनुमान लगाया गया है कि मधुमक्खी से जो फसलें हैं उनमें 20-30% तक वृद्धि होती है।
1: आपने कहा कि जो मधुपेटिका है, तो जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे युवा किसान हैं, हमारे युवा किसान कैसे इस मधुमक्खी पालन से जुड़े?
0: मधुमक्खी पालन से जुड़ने के लिए जैसा कि हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले मधुमक्खी पालन करने से पहले किसान भाई उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण के दौरान आपको इन चीजों की जानकारी होती है कि किस तरीके से मधुमक्खी को पाला जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, उनको किन चीजों की आवश्यकता होती है, कहाँ पे मधुवाटिका स्थापित करें, उसके लिए आवश्यक क्या जानकारियां हैं, तो प्रशिक्षण के दौरान आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किसानों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है और बुंदेलखंड के किसानों के लिए और उनके विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहता है दिन रात, तो उसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि किसान भाई रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत जो प्रशिक्षित किसान हैं उनको विश्वविद्यालय जो मधुपेटिका देता है, और ये बताता है कि किस तरीके से किसान भाई एक मधुपेटिका से दो मधुपेटिका, चार मधुपेटिका बना सकते हैं, और इस तरीके से वो अपनी मधुमक्खी की पेटिका को बढ़ाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
1: जैसे आपने कहा कि हमारे किसान भाई प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो जैसे उन्हें प्रशिक्षण लेना है तो उसके लिए उनको प्राथमिक तौर पर क्या करना पड़ेगा?
0: प्रशिक्षण के लिए ज्यादा आपको कोई इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, अपना आधार कार्ड लेके रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय में आप आइए, कीट विज्ञान विभाग में संपर्क करिए, वहां पे आप अपना आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसके पहले आप लोग को सूचित किया जाएगा कि 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का इसमें प्रावधान है। उन दौरान किसानों को निशुल्क रहने की व्यवस्था, निशुल्क खाने की व्यवस्था दी जाती है, विश्वविद्यालय द्वारा जो बस है किसानों को लेने जाती है, छोड़ने जाती है, और 3 दिन वहीं रहकर किसान भाई सीखते हैं कि मधुमक्खी पालन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: मधुमक्खी पालन हमारे किसान भाई कर रहे हैं, मान लिया करना शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं, तो आप क्या देखती हैं कि झांसी के आसपास मधुमक्खी पालन में क्या परेशानियां आ सकती हैं?
0: देखिए, बुंदेलखंड की मुख्य चुनौती तो है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खी पालन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो 47 से 48 डिग्री तक चला जाता है, जो मधुमक्खी के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने पे मधुमक्खियां अपने बक्से को छोड़कर चली जाती हैं। क्यों? बहुत ज्यादा गर्मी नहीं सहन कर सकती। तो उसके लिए क्या है, ग्रीष्म ऋतु में मधु वाटिका जहां आप स्थापित करते हैं, जहां मधुमक्खी के बक्से रखते हैं उनको मधु वाटिका बोलते हैं, उस जगह को आपको सबसे पहले ये चीजें ध्यान रखना है कि आदर्श मधुवाटिका की स्थापना कैसे करें, ताकि गर्मी के मौसम में आपको ये जो चुनौतियां आती हैं इनका सामना ना करना पड़े। सबसे पहले है कि आप अपनी मधुवाटिका जहां स्थापित करें आसपास साफ बहता हुआ पानी होना चाहिए, और वहां पे छायादार वृक्ष होने चाहिए। अगर छायादार वृक्ष नहीं है तो आप शेड जैसा बना के, जैसे आप झोपड़ी का एक छप्पर सा बनाते हैं, आप वो बना के भी अपने बक्से रख सकते हैं। छायादार वृक्ष होने से और बहता पानी होने से

तापमान है उसमें थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देगा कि वहाँ का तापमान थोड़ा सा एक दो डिग्री कम रहता है। दूसरी चीज, साफ बहता हुआ पानी मिलता है तो मधुमक्खियों को पानी भी उपलब्ध होता है। उस क्षेत्र में आपको मधुमक्खियों के जो वनस्पतियां होती हैं, जो जिसको हम बी फ्लोरा बोलते हैं, जिसमें परागकण होते हैं, पुष्प रस होते हैं, जिनसे आसानी से वो अपना खाना ले सकती हैं। शहद किस लिए बनाती हैं? वो पुष्प रस लेती हैं, उसी से शहद बनाती हैं। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। और गर्मी के मौसम में अगर वहां पे फूल नहीं उपलब्ध हैं तो मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए हम चीनी और पानी का 50-50% का घोल बनाकर उनको देते हैं। साथ ही साथ जो जूट के बोरे होते हैं उनको सुबह शाम गीला करके मधु पेटिका के ऊपर डालते हैं ताकि ठंडक बनी रहे, ताकि हमारी मधुमक्खियां जीवित रहें। और परागकण आते हैं, परागकण बाजार से ले सकते हैं, उन परागकण को मधुमक्खियों को आप खाने के लिए दे सकते हैं ताकि मधुमक्खियां जीवित रहें। और ये चीज

0: जीवित रहें। और परागकण आते हैं, परागकण बाजार से ले सकते हैं, उन परागकण को मधुमक्खियों को आप खाने के लिए दे सकते हैं ताकि मधुमक्खियां जीवित रहें। और ये चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो किसान भाई मधुमक्खी पालन अगर कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में कभी भी शहद का उत्पादन ना लें। गर्मी के मौसम में हमें मधुमक्खियों को जीवित रखना है ताकि हमारा जो मेन सीजन होता है नवंबर से अप्रैल तक, उस टाइम पे शहद का उत्पादन ले ताकि मधुमक्खियां भी आपकी जीवित रहें और आपके नुकसान भी ना हो।
1: डॉक्टर उषा जी, जैसा कि आपने मधुपेटिका की बात की, एक मधुपेटिका से हमारे किसान भाइयों ने मधुमक्खी पालन शुरू किया तो लगभग एक साल में एक मधुपेटिका से उनको कितनी आय लगभग हो सकती है?
0: देखिए, मधुपेटिका जैसे सिंगल होती है, सिंगल स्टोरी मधुपेटिका है, उसका जो कॉस्ट होता है वो 2000 रूपए होता है। 2000 रूपए लगाकर किसान मधुपेटिका स्थापित कर सकते हैं। और हम यही सुझाव देते हैं कि कभी एक मधुपेटिका से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 मधुपेटिका रखें। और जो मधुपेटिका है ये एक स्टैंडर्ड साइज आता है जिसको बोलते हैं लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव। ये लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव एक स्टैंडर्ड साइज है, इस तरीके के बनाए जाते हैं। और एक मधुपेटिका के अंदर 8 से 10 फ्रेम होते हैं, 8 से 10 फ्रेम की मक्खी होती है, वो सर्वाइव करती है। और जो मधुमक्खी का जो बक्सा होता है उसमें एक रानी होती है और करीब 100 से 200 जो नर मधुमक्खी होती हैं, जिनको हम ड्रोन बोलते हैं, और उसके अलावा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखें कि उसमें रानी मधुमक्खी है कि नहीं है। रानी मधुमक्खी अगर मर जाती है तो आपका बक्सा खत्म हो जाता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी का काम अंडे देना है। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए, और जब भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत करें तो उसमें ये चीज ध्यान दें कि आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार इन चीजों को देखना है, अपने बक्से का निरीक्षण करना है कि उसके अंदर रानी मधुमक्खी अंडे दे रही है कि नहीं दे रही है, पुष्परस है कि नहीं है, मधुमक्खी जो खेतों में जा रही है, श्रमिक मधुमक्खी जो खेतों में जा रही है वो वापस आ रही है तो वो परागकण लेके आ रही है नहीं है। अगर आसपास परागकण नहीं है तो आप अपने मधुमक्खी के बक्सों को ऐसी जगह पे जहाँ पे फूल है वहां पे आप रख सकते हैं।
1: उषा जी, हमारे आम जीवन में मधुमक्खियों का क्या योगदान है? क्या वो हमारे जो जीवन से जो संबंधित जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं उन पर भी कोई प्रभाव डालती हैं?
0: मैं मधुमक्खी पालन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। हम हमेशा बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए, मधुमक्खियों को बचाना चाहिए, तो एक सबसे बड़ी बात मैं सभी को बताना चाहूंगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर मधुमक्खी इस धरती से विलुप्त हो गई तो 3 से 4 साल के अंदर मनुष्य प्रजाति धरती से विलुप्त हो जाएगी। तो ये कैसे होगा इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। वो इस तरीके से कि मधुमक्खियां धरती पर 70 से 90% जो वनस्पति है वो मधुमक्खियों द्वारा परपरागित है। अगर परपरागण नहीं होगा तो फसल उत्पादन में कमी आएगी, धीरे धीरे जो खाने की कमी है होती जाएगी, और खाने की कमी होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन पर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, जो हर तीसरा चम्मच हम खाते हैं खाना, वो हम मधुमक्खियों की वजह से ही खाते हैं, और मधुमक्खियां हमें हमेशा देती ही देती हैं। हमारे फसल के उत्पादन में भी वृद्धि करती हैं, हमें मधुमक्खी उत्पाद भी देती हैं। मधुमक्खी उत्पाद की हम जैसे बात कर रहे थे, आप शहद की बात कर लीजिए, शहद हर एज के लोग हैं, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर एज के लोग खा सकते हैं। छोटा बच्चा है, आप उसको ठंड लग गई है, शहद चटा देते हैं। और शहद का एक गुण होता है कि अगर आप गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के साथ लें तो आपको ठंडक देगा, और जाड़ों के मौसम में आप गर्म दूध के साथ लेंगे तो आपको माहट देगा। और शहद एक औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मोम है, मोम में वार्निश इंडस्ट्री है, जो रोजगार की बात करते हैं, मोम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना के वो मार्केट में दे सकते हैं। उसके अलावा जो आपके प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस भी प्रयोग में किया जाता है। जो रॉयल जेली है, रॉयल जेली एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, लोग उसको खाते हैं ताकि वो लंबे समय तक जवान रहते हैं, जो रॉयल जेली की विशेषता होती है। उसके कैप्सूल आते हैं, काफी लोग उसको खाते भी हैं। उसके अलावा मधुमक्खी के जो विष होता है उससे अर्थराइटिस का इलाज होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, मधुमक्खियां हमेशा हमारे लाभ के लिए ही काम करती हैं। वो सिर्फ ये कहती हैं कि हमें मारिए मत। जो हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, हम हमेशा किसान भाइयों को बताते हैं कि दिन के समय कीटनाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि दिन के समय मधुमक्खियां खेतों में जाती हैं, पुष्प रस लेती हैं, परागकण लेती हैं, हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं वो मर जाती हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों से अनुरोध है, यही कहना चाहूंगी, कीटनाशकों का ज्यादा छिड़काव ना करें। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो साय के समय में

0: मधुमक्खियां किसान की छोटी मित्र होती हैं और वो हमेशा लाभ ही पहुंचाती हैं। अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम सभी को मधुमक्खियों को बचाना ही है।
1: आपने अभी बताया कि एक जो मधु पेटिका है वो लगभग 2000 रुपए की आती है। अब जो हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो कम आय के किसान हैं, तो क्या आपके विभाग से भी कुछ उनके लिए मधु पेटिकाएं दी जाती हैं?
0: जैसा कि हमने बताया कि विश्वविद्यालय किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण दे रहा है, तो किसान भाई वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत हर एक किसान भाई को 2 मधुपेटिका फ्री में दी जाएंगी। जैसा कि विश्वविद्यालय हमेशा किसानों के हित में कार्य करता है, लेकिन इन चीजों के लिए जो किसान भाई पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ताकि जो मधुमक्खी का बक्सा दिया जाता है वो मधुमक्खियां जीवित रहें। क्यों? क्योंकि जो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है उसको सारी जानकारी होती है कि इसमें रोग लग रहा है, इसमें बीमारी लग रही है, उसका हम कैसे निदान करें।
1: डॉक्टर उषा, हमारे बुंदेलखंड में, खासतौर पर झांसी और झांसी के आसपास के क्षेत्र में, हमारे किसान भाई पलायन करते हैं, रोजगार के अवसर तलाशने के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, तो मधुमक्खी पालन अगर वो करें तो क्या उन्हें यही रोजगार के साधन मिल सकते हैं?
0: मधुमक्खी पालन से आप एक चीज देखेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। आत्मनिर्भर भारत कैसे? कि आज का समय ये है कि आपको नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करके इतनी आय आप कमा सकते हैं कि आप खुद रोजगार सृजन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के साथ साथ बहुत से अन्य रोजगार भी जुड़े हैं जो मधुमक्खी पालन करता है, एक चीज वो हो गई। साथ ही साथ जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं वो बक्से बनाने का काम कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के जो पेटिका होती है उनके अंदर जो फ्रेम में जो मोम लगाया जाता है, जिसको हम कॉम फाउंडेशन शीट आधार छत्ता बोलते हैं, उसको बनाने का कार्य कर सकते हैं। उसको फिट करने के लिए उसमें तार लगाए जाते हैं, तो जो लोग हैं इसका कार्य भी कर सकते हैं। बक्सों को तैयार करने का कार्य भी कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन के साथ साथ कई अन्य ये रोजगार भी जुड़े हुए हैं। तो इसको किसान भाई एक समूह बनाकर करेंगे तो उनको ये चीज का लाभ तुरंत दिखाई देगा।
1: डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे युवाओं की। आजकल का युवा ये सोचता है कि उसे कम मेहनत करके और ज्यादा लाभ मिले, तो हमारे युवा भाई इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा एक ऐसा जोशीले होते हैं कि आप उनको कोई भी कार्य है आप थोड़ा सा बताएंगे, वो एक जो उनका माइंड होता है, इनोवेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से वो शोध करते हैं और मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी के विषय में जानकारी बहुत ही जल्दी वो सीख सकते हैं, और जो मधुमक्खी पालन है वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और अपने जरिए वो अन्य आसपास के गांव हैं उन लोगों की भी सिखा के उन लोग में एक जागरूकता ला सकते हैं।
1: अंत में डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी कृषि पे ही निर्भर ना रहें, कृषि के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय हैं, मधुमक्खी पालन है, उनको भी अपनाएं, और मधुमक्खी पालन करके आप अपने आय में भी बढ़त कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य में भी बढ़त कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनको अपने जो साथी गण हैं उनको भी बताएं, इनके लाभ बताएं, ताकि वो भी मधुमक्खी पालन करें, और इस तरीके से एक कड़ी जुड़कर हम अपने समाज को और एक तरह से अपने देश को और अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर उषा, आप रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से हमारे स्टूडियो में पधारी। आपने हमारे किसान भाइयों और बहनों को मधुमक्खी पालन संबंधी इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तो भैया, तो देखो, जो तो सुनी अब अपन ने भेंट वार्ता, मधुमक्खी पालन आवश्यक उपकरण एवं व्यवसाय का उत्तम पर्याय। डॉक्टर उषा से राकेश भैया को बातचीत बतकाओ, कितनी उम्दा बातें बताई हैं, और देखो हमारे किसान भैया ने भी देखो अपने जहन में उतार लिए कि अपन को मधुमक्खी पालन करने है, और देखो भैया बतकाओ अपन आगे कछु और करें, कहना भैया हो जाए एक उम्दा सो देशभक्ति लोकगीत, तो देखो अपन को सुनवा रहे, और कलाकार हैं गावे बारी सुशीला देवी, तो देखो हम भी सुने और अपन भी सुनो।

प्राणन से प्यारो भारत देश हमारो, कितनो उम्दा आवे अपने देशो देशभक्ति लोकगीत सुनो। गावे वाली कलाकार थी सुशीला देवी। और देखो भैया, आज की सीख में हम अपन को एक ही बात कहबो चाहे, जीवन का उपहार अंगदान महादान। देखो भैया, अपन सभी जने जानत है कि हमारे भारत देश में तमाम दानी भाई जिनने अपने जीवन में और अपने जीवन काल में कछु ना कछु दान करो है, जिसे उनको नाव देश में रोशन भाव है। तो भैया, दान करबो बहुत ही अच्छी बात है। अकेले भैया जिनने अंगदान करी वे भैया बहुत ही बड़े दानी कहाए गए हैं। जैसे भैया ये जीवन को उपहार बहुत ही बड़ो जो दान होते अंगदान। भैया ये देखो कहो भी गो है, जीवन को उपहार अंगदान महादान। भैया अंगदान इंसान को देखो मृत्यु के बाद या भैया जीवित में अनेक जो स्वस्थ अंग होते हैं, जो अंगन को जो जरूरतमंद जो मरीज होते हैं उनको दान करने की प्रक्रिया है ये भैया महादान। और भैया जीवन को सबसे अनमोल उपहार भी कहो जाते हैं। कैसे भैया, एक अकेलो दाता अपने अंगन में जैसे भैया हृदय है, कृत है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, इन सबको मिला के 85 से अधिक या भैया 8 लोगों तक को जीवन बचा सकते हैं। अब बात करते हैं भैया अंगदान की महत्व की। जिन मरीजन के जो भैया अंग खराब हो जाते हैं, जिनको जरूरत है, तो उनको भैया जो पुनर्जीवन को एकमात्र साधन है, यानी कि भैया इंसान की मृत्यु के बाद भी भैया उन अंगन को दान करो जाते और शरीर जो होते वो दूसरन के शरीर के रूप में जीवित बनो रहते। और भैया इससे क्या होता है, भैया निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने को मौका मिलता है। तो सबसे बड़ो जो देखो मौका मिलता है और

अंगदान करवे के कछु भैया नियम सोई होते हैं। सो भैया अपन को वे भी ध्यान रखने हैं कि अंगदान मृत्यु के बाद भैया जब अपन को होते तो परिवार की जो सहमति होते बिना उनके सहमति के जो अंगदान नहीं होता है। और भैया जो हमारे किसान भैया जो भैया बहन है जो जीवित में अपनों को अंगदान करबो चाहते हैं तो उनमें देखो भैया परिवार की स्वेच्छा से अपन अंगदान कर सकते हैं। और देखो भैया ये बात को हमारे विशेष तौर पर ध्यान रखें भैया ने कि को जीवन समर जाए अपने अंग से उको दान करबो बहुत ही अच्छी बात है। और देखो भैया आप घड़ी अपन को इजाजत कछु नहीं दे रही आगे बतकाओ करवेगी तो अपन को आज को कार्यक्रम कैसो लगो तो कार्यक्रम को लिख लेवे पतो कार्यक्रम चौपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी पिन कोड है 2814128। एक संगे अपने भैया पवन को दो आज्ञा नमस्कार।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। श्रोताओं, आप सुनिए खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना और कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए खोए हुए व्यक्ति के बारे में ये सूचना। खोए हुए व्यक्ति का नाम इस प्रकार है: पिंकी पुत्री जुगू वंशकार, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, जो डगरिया रुद्र विजौली थाना प्रेमनगर जिला झांसी से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है: रंग सांवला है, आंखें बड़ी व काली हैं, काले बाल और नाक औसत है, कद 4 फीट 7 इंच है, सफेद रंग की टी शर्ट व नीले रंग की जीन्स की पैंट व काली पट्टी की चप्पल पहने हुए हैं ये। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी को सूचित करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई और अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने आप सुनेंगे संध्या 6:35 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। पुराने नगमे आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कस्टमाइज्ड प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। प्रायोजक होंगे कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि 10:00 का समय होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे आज उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 31वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर व प्रस्तुति होगा सहयोग होगा दीपक शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी।

हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें, रात्रि 10:30 पर आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 31वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा दीपक शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। कार्यक्रम रिमांड समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार रवि। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद और फिल्म का नाम है लीडर।

0: पाएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बार फिर मोहम्मद रफी की आवाज में जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है।

0: ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: जय हिंद। ज्योति बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में काम तो करबे करी थे, मूल कऊ दाय ऐसा हो जात है कि हमारे जो फसल है वही में कीड़ा लग जात है और कऊ दाय तो नुकसान इतना बढ़ जात है कि पूरी पूरी फसल खराब हो जात है।
1: बिल्कुल भैया, देखो यही लिए जो है कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करे चाहिए। जो भैया हम लोग कृषि रक्षा रसायन का उपयोग करी और जो निर्देश पैकेट पर या डिब्बे पर लिखे गए हैं उनका देख पढ़ ली जाए और जैसे कोई बात नहीं समझे में आ रही है तो कृषि रक्षा केंद्र पर जाके उसका समझ के तब अपनी फसल में प्रयोग करा जाए।
0: बिल्कुल बहनी, कुल मिलाई के वही के इस्तेमाल से पहले वही के जानकारी हुआ बहुत जरूरी है। और बहनी एक

0: हम और सुने रहन एक जने से कि वह कहत रहे कि जो डिब्बवा हुआ था ना वही पे छोट छोट चिन्ह बना रहा था और कौदा लालो बना रहा था, तो जौन लाल वाला हुआ था वही के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करे चाहिए, कहे वही से बहुत नुकसान हो सकत है।
1: बिल्कुल सही कहे हो। और जब हम अपने खेते में जो ही रसायन का प्रयोग करे चली तो हाथ में दस्ताना पहन ले और मुंह पर अपने मास्क लगा ले, अपने पूरे शरीर का ढक ले और आंखन में चश्मा जरूर पहन ले भैया।
0: बिल्कुल बहनी, और साथ ही साथ अपने आस पास कौन कौन नई चीज हो रही है वनहों का जाने चाहिए, और ये सब बात हम जानी थे आज की खबरें में।
2: गोबर, पराली और कचरे से बनेगी ऊर्जा। केंद्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की गोबरधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पशुओं के गोबर, पराली, कृषि अवशेष, प्रेस मड और नगर निकायों के जैविक कचरे से CBG तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2036 तक देश में घरेलू CBG उत्पादन को मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना बढ़ाना। योजना के तहत CNG और पाइप्ड गैस में CBG की अनिवार्य ब्लेंडिंग भी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2027 में 3%, 2028 में 4% और 2029 से 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए गोबर और कृषि अवशेष से अतिरिक्त आमदनी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही कचरे का बेहतर प्रबंधन, प्रदूषण में कमी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरा।

0: उपज ना पाए और वही से अपन बाग खराब हो जाता है।
1: बिल्कुल भैया, देखो खेती के साथ अगर फल फूल हुआ करत है तो देखो कितना अच्छा लागत है।
0: बिल्कुल बहनी, यही बदे आज की बात माँ विषय है अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन, और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अमरूद के बागों में इस समय सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंदन किशोर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन की बात करें तो अमरूद की बागवानी जहां शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या गुंजाइश है?
3: नमस्कार सभी किसान भाई और बहनों को। जो भी किसान भाई हमारे अमरूद की खेती करना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि भारतवर्ष में अमरूद एक बहुत महत्वपूर्ण फल के तौर पर सामने आ रहा है और हमारे देश का ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण फल है। इसकी उत्पादकता तो वैसे 15 टन प्रति हेक्टेयर है हमारे यहाँ, लेकिन बड़ी गुंजाइश है कि अगर हम इसकी खेती अच्छे से करें इसकी उत्पादकता काफी बढ़ सकती है और 25 टन तो हम आराम से उत्पादन कर सकते हैं। जो नए पौधे लगाने जा रहे हैं इसमें जो है अधिक घनत्व के पौधों को लगाने की जरूरत है, जिसमें कि हम कम से कम 800 से 1000 पौधे एक हेक्टेयर में लें, जैसे 3 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर हम अमरूद के पौधे को लगाएं। दूसरा, हमारा संस्थान एक तकनीक जो है ट्रेनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं अलग, उसको कहते हैं एस्पेलियर ट्रेनिंग सिस्टम,
2: यानी छत्रक प्रबंधन।
3: छत्रक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और उस छत्रक प्रबंधन में हम 1500 से 2000 पौधे को उसमें लगा सकते हैं और अधिक पौधे होने के कारण उसके अच्छे से हम प्रूनिंग की एक जो है तकनीक बताते हैं किसानों को, ताकि उसका जो उत्पादन है लगभग 50% आसानी से

0: बढ़ने की संभावनाएं होती। डॉक्टर साहब, चूंकि रोपण का समय है तो जहां योजना है तो कौन कौन सी प्रजातियां चुने जो व्यावसायिक दृष्टिकोण बाजार है? ललित, लालिमा, नई वैरायटी, ये पांच अमरूद के तैयार किए गए हैं। ये सभी वैरायटी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे वीएनआर की भी वैरायटी उत्पादन करते हैं, उसके साइज बड़े होने के कारण उसका बाजार में अधिक
1: आकर्षण है,
0: आकर्षण है और मूल्य जो है वो अधिक मिलता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे देश की प्रजातियां हैं उसमें भी उतना ही पोटेंशियल है
1: और स्वाद अलग है।
0: स्वाद अलग है। हमारे जो अपने वैरायटी हैं उस पर भी तवज्जो दें ताकि हमारा भी जो वैरायटी है वो आम जो कंज्यूमर हैं वहां तक पहुंच पाए और हमारा जो उद्यानिकी है वो आगे बढ़ता रहे।
1: डॉक्टर साहब, जहां अमरूद की पुरानी बागवानी है, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वहां खड़ी फसल में इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण काम है?
0: अब देखिए, आप देखेंगे तो अमरूद की मुख्य फसल जो है एक बरसात के सीजन में आ गई और दूसरे जो है वो जाड़े के सीजन में आती है।
1: हाँ,
0: ऐसा देखा गया है जो बरसात के अमरूद होते हैं वो थोड़े फीके होते हैं
1: और बाजार भाव भी कम,
0: बाजार भाव भी कम है और उसमें जो है एक होता है फल मक्खी, उसका ज्यादा जो है प्रकोप होता है। और बरसात में क्या है कि आप बहुत दिनों तक अमरूद को नहीं रख सकते। अगर दो दिन नहीं बिका अमरूद तो किसानों को घाटा हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम जाड़े के फसल को लें जो हम लोग प्रेरित करते हैं तो उसमें ये सभी चीजें नहीं होती हैं
1: जी।
0: तो इसका हम रेगुलेशन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्रॉप का रेगुलेशन। और उसको हम करते हैं प्रूनिंग के द्वारा कि अगर आपने प्रूनिंग मार्च अप्रैल में किया तो आपको फल मिलेगा बरसात में
1: जी।
0: और अगर आपने प्रूनिंग को डिले करके जून कर दिया, जून में कटिंग किया तो फल मिलेगा जाड़े में
1: जी।
0: तो मैं किसानों को यह कहता हूं कि मार्च के जो है उसको फल को कम करें और प्रूनिंग करें आप जून में, ताकि आपको
1: जाड़े की फसल,
0: जाड़े की फसल आपको अच्छे से मिल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्व प्रबंधन की बात की तो अमरूद के जो फलदार वृक्ष हैं उनकी भूख मिटे इसके लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: हम एक पौधे में कितने फल हों यह निर्धारित करना बहुत जरूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कभी कभी कि बहुत ज्यादा फल छोड़ते हैं तो फल का साइज घट जाता है। फल कम छोड़ेंगे तो साइज बढ़ जाएगा और जितने फल होंगे उसके अनुसार हमको उसको लवण देना है। एक साधारण भाषा में कहते हैं कि हम लोग लगभग 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और लगभग 400 ग्राम पोटास प्रति पौधा हम लोग बताते हैं
1: हर साल,
0: हर साल। और ये हमको कम से कम तीन स्टेज में देना चाहिए
1: जी।
0: एक महत्वपूर्ण स्टेज है जब हम प्रूनिंग करके नए पत्ते निकलते हैं उस समय देना जरूरी है। दूसरा, जब फल बढ़ रहे हो तब देना है, जैसे अगस्त सितंबर में हमने एक बार दे दिया। और फिर हम फल जब तोड़ लेते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बाहर चला जाता है, तब एक न्यूट्रिएंट की जरूरत। इस तरह से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसका प्रबंधन करेंगे तो हमारा जो अमरूद की खेती है वो बेहतर होगा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार बेसल डोज में बागवान भाई अगर नहीं दे पाए हैं पोषक तत्व तो पानी छिड़काव भी कर सकते हैं?
0: आजकल बड़ा अच्छा तकनीक आया है कि हमारे पास पानी में घुलने वाले खाद उपलब्ध है,
1: जल विलेय और
0: जल विलेय। उसमें जैसे आप कहेंगे 18-18-18, मतलब नाइट्रोजन 18% है, फॉस्फोरस 18% है, पोटास भी 18% है, कहीं कहीं ये 20-20-20 में भी उपलब्ध है। इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। इसका छिड़काव 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम प्रति लीटर हम इसमें घोल दें और पौधे में स्प्रे करें। फिर इसके साथ हमको बोरोन की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: बोरोन का छिड़काव हमको करना बहुत जरूरी है
1: क्योंकि पोषक तत्व,
0: पोषक तत्व का वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जो मिट्टी है इसमें बोरोन कम है,
1: काफी कमी दिख रही
0: है, काफी कमी दिखती है। तो इसलिए उसका छिड़काव साथ में ही हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर हमारे संस्थान में ने भी तैयार किया है और वो पोषक तत्व तो हम उसमें 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, उसको हम लोग फसल प्रभात कहते हैं
1: जी।
0: वो उपलब्ध है किसानों के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो कोई भी सूक्ष्म तत्व का मिक्सर बाजार में उपलब्ध होते हैं, अच्छे ब्रांड का लें और वो आप छिड़काव करें तो वो भी पोषक तत्व आप जो मैनेज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा नंबर है 9337962793।

0: या 93 37 96 27 93। इससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हैं अमरूद से संबंधित, प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। तो पौधे का फोटो इस व्हाट्सएप पर भेजें, निश्चित रूप से आपको सही जानकारी प्राप्त होगी।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं यही कहूंगा कि ये एक तो विटामिन सी पूर्ण फल है, दूसरी इसमें आम से अगर कंपेयर करेंगे इसमें बहुत कम कीड़े लगते हैं और इसको बहुत ज्यादा लवण की भी जरूरत नहीं है,
1: यानी पोषक तत्व
0: की जरूरत नहीं है। एक सामान्य हमारे किसान भाई इसकी खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेस्ट मैनेजमेंट कीट प्रबंधन की जरूरत नहीं है। तो हम एक अच्छा सेफ फ्रूट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और बाजार में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर हम जाड़े के फल अच्छे गुणवत्ता के साथ लें, तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।
1: डॉक्टर कुंदन किशोर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो बादल है समय गहराए रहा है और जो सावन का छटा है वो हर जगह देखे मिल रही है।
3: तो तुम्हारा मन जो है कुछ मनोरंजन करे है हमका लागत है।
2: बिल्कुल बहनी, ऐसा मैं तो कैसे मनोरंजन न कीन जाए।
3: तो चलो भैया एक लोकगीत लेके आए हैं। हाँ, नकटा।
2: हाँ,
3: जो वंदना मिश्रा जी की आवाज में है। हे सैया हमका, बिल्कुल सुन लीन जाए।

0: भाई वाह, अब तो बजरिया घूमिन लियो, अब तो ठीक है, अब चलो कार्यक्रम में। देखो हम पंच अपने खेती पाती में काम तो करवे करी थे, मूल कौदा ऐसा होत है कि हम जितना सोचित है उतना कह ना पाई थे, और कऊ किसान ऐसे हैं जे वो से बढ़ के काम कर लिए थे, और यह सबका हम जानित है आज के किसान में।
1: सही कह रहे भैया। तो देखो आज जो है विषय जो हम लेके आए हैं केला और अमरूद उत्पादन है ना, जी के वार्ताकार हैं हरीश कुमार वर्मा भैया, तो यका सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के रामपुरवा गांव के केला अमरूद उत्पादन से जुड़े हरीश कुमार वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय मेरे पास केला है और ताइवान पिंक अमरूद है।
2: रकबा कितना कितना है?
3: मेरे पास 5 एकड़ केला है, 4 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद है।
2: तो अमरूद से शुरुआत करें कि कहां से मन में जगा कि आप तो केला उत्पादन से हमेशा से जुड़े रहे
3: जी,
2: ताइवान पिंक अमरूद की तरफ रुझान कैसे हुई?
3: इसलिए हुआ क्योंकि केला में लगातार कुछ दिन से करते हुए मिट्टी में कुछ ऐसे फंगस डेवलप हो गया जिनसे केले के पौधों को नुकसान हो रहा था, फसल को नुकसान हो रहा था, तो केला के विकल्प में मुझे अन्य कोई फसल चाहिए थी। तमाम इधर उधर विचार करने के बाद चूंकि धान गेहूं में हमको उतना उत्पादन या प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे केला में मिल रहा था, तो उसके विकल्प स्वरूप मैंने देखा कि ताइवान पिंक की आज बाजार में मांग बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड है, रेट भी अच्छा है, तो मैंने ताइवान पिंक अमरूद लगा दिया।
2: तो आपने लगाया कब?
3: मेरे पास 4 एकड़ अमरूद है जिसका 2 एकड़ मैंने 2023 में लगाया था। 2023 में लगाने के 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में उसकी मैंने बिक्री शुरू करी, उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने नया 2 एकड़ और लगाया।
2: यानी लगभग 4 एकड़?
3: 4 एकड़ जी।
2: और केला?
3: केला मेरे पास 5 एकड़ है, क्योंकि मैं पहले तो केला का कुछ बड़ा काम करता था लेकिन जमीन में वही फंगस के कारण क्षेत्रफल काफी कम कर दिया, और ये जो 5 एकड़ केला भी मेरे पास है वो नई जमीन में है, यानी कि जहां पर हमने इसके पहले केला का उत्पादन नहीं करा था।
2: यानी फफूंद जनित बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है
3: जी। केला रोपण के पहले गर्मियों में जब हमको धूप मिलती है, गर्मी होती है, बहुत ही ध्यान देना होता है कि जितनी गहरी और अच्छी जुताई हम करेंगे उतना मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा। बारिश के समय जाड़ा आने के पहले लगभग 4 महीने का जो समय होता है उसमें जितनी अच्छी हम देख रेख कर लेंगे, चूंकि जाड़े में मौसम का दुष्प्रभाव जाड़ा के कारण पाला के कारण हमारे केला का विकास सही नहीं होता है, तो इसके लिए जाड़ा शुरुआत होने के पहले हम अपने पौधे को 3-4 फीट का बना लें, बढ़ा लें, और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब अच्छी जल निकास व्यवस्था हो, समय समय पर उसको जो भी फर्टिलाइजर देना हो, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, तब उसकी हम ऐसा 4 फीट का वो कर सकते हैं।
2: अभी आपकी फसल किस हालत में है केला?
3: लगभग 70% फूल आ चुका है, 30% में अगले 10-15 दिन में फूल आ जाएगा।
2: यानी आपकी अगेती फसल है?
3: हाँ, थोड़ा सा अगेती है और इसकी कटाई लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगी।
2: उस समय भाव अच्छा रहेगा?
3: बहुत ज्यादा संभावना होती कि शुरुआत में लाभ अच्छा मिले।
2: और अमरूद में कौन कौन सी बारीकी आपने किया?
3: अमरूद में अभी 1-2 साल से फ्रूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, थोड़ा सा होता था, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा हुआ मौसम में दुष्प्रभाव हो सकता है तो फ्रूट फ्लाई की बहुत समस्या आ गई, तो इसके लिए अब अमरूद के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उसकी बैगिंग की जाए, फल की बैगिंग की जाए।

0: तो आप अमरूद की बैगिंग की तैयारी में हैं?
1: जी, मेरी बैगिंग मैं राजस्थान से मंगवा चुका हूँ। मेरी बैगिंग मेरे घर पे आ गई है। अभी जैसे ही मेरा नींबू के आकार का जो फल होगा तो उसकी बैगिंग हम शुरू करवा देंगे।
0: अमरूद की बागवानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसकी रोपाई से लेकर के पूरे साल?
1: जी, अमरूद की फसल में ये जो ताइवान पिंक प्रजाति है, ये चूंकि घना लगता है, 8x10 की हमारी दूरी है, हमारे जो पहले के पौधे होते थे उनकी अपेक्षा इसको नमी सब कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, तो पर्याप्त नमी देना होता है। क्योंकि ये ऐसी प्रजाति कि इसमें साल भर फूल से फल बनते रहते हैं
0: जी,
1: थोड़ा सा साल भर में दो समय ऐसा होता है कि तब थोड़ी सी हैवी फ्लावरिंग होती है या फ्रूट बनता है, वैसे फल मिलेंगे पूरा साल। तो उस समय जिस समय फूल से फल बन रहा हो या फल का विकास हो रहा हो, उस समय हमारे पौधे को नमी का बहुत ही ध्यान देना जरूरी
0: है। और खुराक भी?
1: जी, खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हमारा फूल से फल बन रहा हो, जैसे हमको इसमें यूरिया का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, एनपीके आप डाल सकते हो, पोटास से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप उसको ऐसे दे सकते हो, मतलब पोटास की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए
0: ताकि मिठास रहे, क्वालिटी
1: जी,
0: रहे,
1: क्वालिटी,
0: पोटास, रोग दोख और कीड़ा मकोड़ा
1: जी,
0: ना लगे,
1: उनका थोड़ा प्रभाव कम होगा।
0: तो कुल मिला जुला करके केला अमरूद उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा में जो केला में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और केला के विकल्प में जहां पर केला नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, चाहे फंगस के कारण अन्य कोई कारण, तो उसके विकल्प में ताइवान पिंक अमरूद, इनकी खेती मेरे हिसाब से उपयुक्त।
0: पूरे साल की लागत की बात करें तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है केला अमरूद में?
1: डॉक्टर साहब, इन चीजों को मैं अलग अलग करके बता सकता हूँ, साल भर में तो नहीं बता सकते। केला में लगभग 1.25 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है, अगर औसत दर्जे का मुझे रेट मिल जाए तो लगभग 3-3.5 लाख का बिक जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, लेकिन ये 15 महीने में होता है।
0: और अमरूद में?
1: अमरूद में लगभग 1 एकड़ की लागत एक साल में प्रथम वर्ष होगी लगभग 50-60 हजार रुपए और द्वितीय वर्ष में इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अमरूद में एक काम ज्यादा होता है, हर साल उसकी कटिंग करना, और जितना आप कटिंग करोगे, जितनी अच्छी आप कटिंग करोगे, आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, फल का साइज और उसका स्वरूप दोनों बेहतर होंगे।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि अगर वो केला उत्पादन करते हैं तो केला में जो उनको लाभ हो रहा था, जैसे उनको काम करने में अच्छा लग रहा था, तो अगर किन्हीं कारणवश केला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आकर्षण इधर अगर होता है तो उसके विकल्प स्वरूप अच्छी चीज है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 800-900-2122, 800-900-2122, 800-900-2122।
0: हरीश कुमार वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी कहानी थी कि आप केला के लाल तो है ही है, आपने नई शुरुआत की है अमरूद उत्पादन की और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं और किसान भाई आपसे सीख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ ज्योति बहनी।
3: देखो खेती पाती करक समय अगर हमका मौसम का हालचाल बढ़िया मिल जाए
4: हाँ।
3: तो देखो कितना हमका जो है सुविधा हो जाते है। तो देखे हम तुम्हारे हाथे में यहाँ मौसम की जानकारी है।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान

0: मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से जो 19 अगस्त तक का मौसम है कि संभाग में कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना, चेतावनी देखा जाए तो मेघ गर्जन के साथ बात के चेतावनी है।
1: तो भैया किसान पंच अपन तैयारी रखे और अपने खेतन की मेढ़ सुधिया लिए भैया।
0: बिल्कुल बहनी, बहुत जरूरी है।

0: किसान पंच अपन तैयारी रखें और अपने खेतन की मेढ़े सुधिया लिए भैया।
1: बिल्कुल बहनी, बहुत जरूरी है। और अब पंच भाई का बताए दिन जाए अपने कार्यक्रम का पता। तो कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन नंबर 226001।
0: रामजीत भैया।
1: हाँ ज्योति बहनी।
0: अब देखो हम अपन ईमेल आईडी बता दे, तो ईमेल आईडी लिख लिए सब लोग, farmandhomeairlko@gmail.com।
1: बिल्कुल बहनी। और देखो समय हो चला है तो आ गया जय।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू हो गया नया ड्रेस कोड, 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जीपीओ और पोस्ट ऑफिस के अधिकारी

0: अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अयोध्या में गांधी पार्क के सामने से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। वहीं बाराबंकी में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गयी। मैनपुरी में अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गयी। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं धन्यवाद देता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उस विचारों को, उस सोच को जो आज पूरे देश में एक साथ हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे देश भर के कोई गांव, गली, शहर, नगर कुछ भी नहीं बचेगा जहाँ तिरंगा ना हो। और ये सोच जो डेवलप हुई है, ये संदेह मुझे भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक करने के लिए, संगठित होने के लिए एक बढ़िया अवसर देती है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में बदलाव के क्रम में रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।
3: हमारी संत समिति ने निर्णय लिया है कि वो सूचीबद्ध जो नीचे सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा रेशमी सिल्क का वस्त्र होगा, नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय होगा। शरदकालीन ऋतु में ऋतु के अनुसार होगा वस्त्र, लेकिन कलर वही रहेगा, पीत वस्त्र में रहेंगे सभी लोग, ये तय किया गया है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विज्ञान और तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया।
4: एक 28 लाख रुपया का खर्च करके इसरो का बड़ा संसद है। इसरो के चेयरमैन खुद ये देखने के लिए आए और हमारे बच्चों को तैयार किया। और आज छठी सातवीं आठवीं कक्षा के बच्चे जिस तरह उसका देखा थे,

0: समझाते हुए कि क्या टेक्नोलॉजी अब गगनयान के लिए क्या काम कर रहे, चंद्रमा की धरती पर हम कैसे उतरे, ये सब आज इतने होशियार हो गए हैं, मैं जाती हूँ तो मुझे भी समझाया।
1: प्रदेश के वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट।
2: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश में अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार से पहले और उसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम को अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रियों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर इस दिशा में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्य योजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नए नालों की पहचान की है, जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोरखपुर में आज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और फरुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए ज्योति शर्मा की आवाज में।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097

0: कॉल करें।
1: बुंदेली लोक संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से और कार्यक्रम है खुशबू माटी की। लीजिए इस कार्यक्रम में आप सुनिए ब्रजलता मिश्र की आवाज में ये सिंगार गीत।

अभी आपने ब्रजलता मिश्र की आवाज में ये सिंगार गीत सुना। लीजिए आप सुनिए ये देशभक्ति लोकगीत। गायक कलाकार हैं हर प्रसाद कुशवाहा।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी सही। विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
1: बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए आप सुनिए ये गारी। गायक कलाकार हैं रजनी अर्जरिया।

0: अभी आपने रजनी अर्जरिया की आवाज में ये गारी सुनी। बुंदेली लोक संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से और कार्यक्रम का नाम है खुशबू माटी की। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम के अंत में बद्री प्रसाद परदेशी की आवाज में ये देशभक्ति गीत।
1: नी को लगे

झर झर ना खेती करत किसान, देश की धरती

बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की में आज आप सुन रहे थे ज्योति शर्मा, ब्रजलता मिश्र, हर प्रसाद कुशवाहा, बद्दी प्रसाद परदेसी और रजनी अर्जरिया के गाए बुंदेली लोकगीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है।

वृक्ष धरा के हैं आभूषण, करते हैं ये दूर प्रदूषण। हम सबका हो एक ही नारा, प्रदूषण मुक्त हो देश हमारा। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026

26 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की।
सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी।

और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के

0: वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी नगमें।

फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिके।

0: कि बंसी जाम बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा
1: अभी आपने दो गीत सुने। पहला गीत आपने सुना था मोहम्मद रफी और साथियों व बलवीर की आवाज में। फिल्म का नाम था नया दौर। गीतकार थे शायर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर। और अभी आप जो गीत सुन रहे थे उसका फिल्म का नाम था सिकंदर आजम। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में ये गीत था। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हंसराज बहल।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान

0: और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: इसके साथ ही पुराने नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कस्टमाइट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, प्रायोजक हैं कानून एवं न्याय मंत्रालय।
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: तो जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, and we usually ignore the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex

प्रोसेस, क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोस थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ. सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माय मेंटल हेल्थ adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum, some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. तो हमारे reactions अलग अलग होते हैं. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने exam हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों. तो exam एक तरह से उसके लिए stress भी create करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है. बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली वी आर फाइन. बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, we are not able to face those challenges, then we start having headache हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, क्योंकि अक्सर हम mental health issues को भी physical का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, but actually the cause may be at the mental level. ये कहना कि कब उदासीपन डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज अ वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस. जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट द सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीजों को लेके हम nervous हो जाते हैं. Sometimes we say that मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे signs होते हैं जो irrespective, they can be, these signs can be due to some physical illness and these can also be signs for some mental illness. हमारे रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें changes आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं. वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज अ चेंज इन माय इंटरैक्टिव. पहले बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, बट दे आर इम्पोर्टेंट टू बी पिक्ड. सम साइंस आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर.
ये सब कॉमन बीमारी

0: है, बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज्यादा हाथ हैंड वॉशिंग होती है, तो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर तारे जमीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज अबाउट। मेनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डोंट ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू से दे वर्बलाइज देयर प्रॉब्लम्स, देयर हेल्पलेसनेस, एंड दे सीक हेल्प, विच वी मोस्ट ऑफन इन आवर पीयर ग्रुप्स वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लेटर ऑन, अरे उसने तो ऐसा कहा था। समटाइम्स इंडिविजुअल रिपोर्ट मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को, दिस मे बी साइंस फॉर साइकोसिस। समटाइम्स वी से दैट बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया, इट मे बी अ पैनिक अटैक। सो वी नीड टू सीक हेल्प रादर देन फेस दैट मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने। एट टाइम्स इफ इट इज पॉसिबल तो टीचर्स सेटिंग में या पेरेंट्स जो एजुकेटेड है, वी हैव स्मॉल स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर विच कैन एक्चुअली टेल यू कि ये इस 10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है, दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। PHQ GAT 7 आइटम 9 आइटम्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, वेरी सिंपल आइटम्स विच कैन बी यूज्ड इन कम्युनिटी।
1: You have been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: की सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी बाय डॉक्टर रचना भार्गवा प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स दिल्ली।
2: ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में एडल्ट की प्रॉब्लम्स होती है। इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड वाइड दैट मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस दे हैव देयर ऑनसेट इन द एडोलेसेंट एज। दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज कि बच्चों में और एडोलेसेंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द साइंस अर्ली सो दैट वी कैन प्रिवेंट एनी सीवियरिटी ऑफ मेंटल इलनेस। हेल्प सीकिंग ट्रीटमेंट गैप इज वेरी वेरी सीवियर इन आवर कॉन्टेक्स्ट। In the recent National Mental Health Survey, 70-90% treatment gap exists. That means ki people may have mental illness but they do not seek help. So what do we do? We need to tell them that we need to seek help early because I am just giving this example. Bacche mein hyperactivity. Bacha ek jagah tikta nahi hai. Wo baar baar bhag jata hai. Khana khane mein bhi baithta nahi hai. Hyperactivity is one illness which can be easily be recognized. If it goes untreated, it is documented that it may lead to, when the child grows to an adolescent age, he may have develop conduct disorder. We can see that the brain may different jo parts hai, unke different functions hote hai, jo hamara frontal part hai, that helps in decision making. Amygdala, which helps in regulating our emotions. So, when we are helping the child, we are helping in proper development. This support that comes from the environment that helps in the emotional level as well. A child would feel valued. There would be decrease in the cortisol levels, which means stress kam hota hai, and there is a improved decision making. So brain, mind and our behavior, everything is interconnected. When we are seeking support, whether it is peer, whether it is a family, ASHA workers, people who can help definitely boost the morale, boost the confidence and our productivity. I have mental health problems, I need help. To what level? That can be decided at the telemanas level. At the

0: see, we do have primary health centers. We did a survey when we were evaluating the services in district of Maharashtra, and we found वहाँ पे उन्होंने बोला कि बच्चों में तो कोई mental illnesses होती ही नहीं है. Parents don't report. It's not that they don't report. They may be coming with headache, but actual problem may be mental stresses. But अगर हमें उनको पहचानना नहीं आता, तो we will not be able to say that there are mental illnesses coming and reporting in the clinic. So problems lie at various levels. And prevention, when we are talking about prevention, we need not just talk about emotions and brain development and thought processes. We also need to focus on how do we act at the behavioral level. We need to identify how to prioritize what is important right now, decide when to do it, and if it is not important, maybe delegate to some other junior staff, and if it is not at all important, dump it. Before we talk about mental health, we also talk about physical health, physical exercises, sleep hygiene. This is very important because in the technology era, we are so much dependent on our mobiles that before we sleep, we are on the mobile. When we come back from the work, we are on the mobile and the child gets neglected. So our parenting gets distorted. So sleep, diet, device-free zones, they are all interconnected. And all of this together, it will ensure that the self, I will feel healthy and the family, the home environment will be positive. Then I'm talking about mental health. At the workplace, for example, what am I doing? How do I want to see myself after 10 years? I'm moving on with my life. So, besides my own self, I would rather emphasize that the value system is different. Each individual's goal should be different. And we need to prioritize. We need to say no. We need to refuse with like a professional help, whether it is a health center, it's a district hospital, or it's a private setup. Thank you.
1: You have been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity by Dr. Rachna Bhargava, Professor Clinical Psychology, AIIMS Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कस्टमाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. प्रायोजक थे कानून एवं न्याय मंत्रालय. ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है. रात्रि के 8:45 होने को हैं. कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार.
3: भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. संसद का मॉनसून सत्र संपन्न. 12 विधेयक पारित. सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया. जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया. छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी. झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका. और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन. अब समाचार विस्तार से. संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया. पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
5: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक

0: 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57%

0: की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो

0: किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है नया दौर।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है मधुमती।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। नख्वा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद अली का, फिल्म का नाम है लीडर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है उषा अग्रवाल का और प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।

सावन की रिमझिम फुहारे हैं, धरती पर हरियाली के नजारे हैं, झूलों पर झूलता बचपन है और हर दिल में देशभक्ति के तराने हैं। नमस्कार, आकाशवाणी झांसी के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो झांसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह मुलाकात कुछ खास है, क्योंकि तिरंगा अपने पूरे गौरव के साथ आसमान में लहराने को तैयार है और देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने जा रहा है। झांसी की धरती से स्वतंत्रता की बात हो और महारानी लक्ष्मीबाई का स्मरण न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मिट्टी में यहाँ वीरों की कहानी आज भी है, हर कण में देशभक्ति की रवानी आज भी है। तिरंगा जब झांसी की हवाओं में लहराता है, मन महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा गाता है। आज के हेलो झांसी में बात करें उस आजादी की, जिसकी कीमत हमारे वीरों ने अपने प्राणों की न्यौछावर करके चुकाई। आजादी केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी भागीदारी है। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। झांसी की पहचान केवल एक ऐतिहासिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और बलिदान की धरती के रूप में है। महारानी लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। आज हम जब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस आजादी का सम्मान करें, अपने कर्मों से, अपनी ईमानदारी से और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाकर। शहीदों का सपना स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध

0: भारत हो अपना। साथियों, हम सभी सावन के महीने का आनंद ले रहे होंगे और स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुट गए होंगे। सावन लाए हरियाली, तिरंगा लाए खुशहाली, प्रकृति का रखे मान और देश को दे सम्मान। साथियों, अब आगे और बात करें, लेकिन हमारे प्री कॉलर्स की आने लगी है आवाज फोन की घंटी के माध्यम से, तो आइए करते हैं उनके दिल की बात। हेलो झांसी।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी इंद्रभान जी, कैसे हैं?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम। यहाँ पानी गिर रहा है कुछ और छाता हो रही, आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ। और मौसम बना है मैडम, अभी थोड़ी देर बाद फिर पानी जम गिरेगा, अभी तो कम गिर रहा है। छाता और मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।
0: हाँ जी आप सभी को।
1: और दिशा मूर्ति मनोरंजन के साथ अपने पसंद की गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है क्रांति। जिले वाले तेरा नाम क्या है, क्रांति क्रांति। गायिका लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, मोना माली, मनीष कुमार, दिलीप कुमार, क्या बोलते हैं, शशि कपूर, शत्रुघ्न जी को बनाया गया है। और सबसे पहले गीत आपको किन निर्देशों का, पूरे भारत राष्ट्रता को, आकाशवाणी झांसी में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, सभी से भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, श्रोता को, पूरे भारत राष्ट्रता को जुड़े करेगा। जरूर सुना दीजिएगा मैडम।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे आपको।
1: चंद्रमान
0: जी आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: भासी।
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए।
1: मैं तनुश्री बात कर रही हूँ, ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से।
0: हाँ जी तनुश्री जी, कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। संगीत से लगाव बहुत जरूरी है और अच्छा भी लगता है संगीत में होना। तो आप कितने साल की हैं?
1: मैं 19 साल की हूँ।

0: तो आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे?
1: मैम पढ़ाई तो नहीं करती, दसवीं से पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
0: अरे आप ये बताइए कि आपके वहाँ बारिश हो रही है?
1: मैम अभी तो बारिश नहीं हो रही, सुबह से धूप निकल आई है, पर क्या होता है सुबह से धूप आती है और दो तीन के बीच बारिश चालू होती है।
0: हाँ जी ऐसा ही हो रहा है, गर्मी पड़ती है तो उसके बाद बादल आते हैं और फिर बारिश होती है ना।
1: और पहली बार मेरा कॉल लगा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: हाँ जी अच्छी बात है आपका कॉल लग गया। और बताइए आप कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम अभी 15 अगस्त के अवसर पर मैं गीत सुनना चाहती हूँ। मुझे फिल्म का नाम तो ज्यादा तो याद नहीं, पर मुझे लगता है सन ऑफ इंडिया ऐसा कर फिल्म का नाम है और गाने के बोले नन्ना।

0: बहुत बढ़िया ना, सन ऑफ इंडिया का गाना है और हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस का अवसर है और बहुत सुंदर गाना आपने सिलेक्ट किया है।
1: जी मैम थैंक यू, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे पापा को भी बहुत पसंद है।
0: बहुत बढ़िया, हम तनुश्री आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: जी।
1: हेलो झांसी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से।
0: ओके, शिमला से बोल रहे हैं, कैसा है मौसम?
1: कल बारिश हुई थी, आज जो है शिमला का मौसम साफ है और बहुत अच्छा है मौसम। इन दिनों जो है मौसम अच्छा रहता है और हमारा जो बागवानी का जो कारोबार हो गया अच्छा रहता है हिमाचल प्रदेश शिमला में।
0: हाँ जी, हिमाचल प्रदेश, आपकी आवाज भी बिल्कुल वहाँ की निवासियों से मिलती जुलती है, क्योंकि मैं भी हिमाचल गई हूँ तो शिमला वगैरह सब बहुत शानदार एरिया है, बहुत बढ़िया जगह है घूमने की। और आपके बताइए कि बारिश में जनजीवन सामान्य रहता है या कुछ अलग हो जाता है?
1: जी, तो थोड़ा समस्या रहती है। तो हमारे हिमाचल में जो सेब की कारोबार होती है तो बड़ी दिक्कत आती है सेब को ले जाने में और लाने में, क्योंकि हवाई जो है हवाई बंद हो जाता है, जब सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, सेब की जो गाड़ियां हैं तो बीच में रुक जाती है, फिर हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर
0: क्या बोलते, क्योंकि जब मौसम अनुकूल नहीं होता तो आवागमन भी बाधित होता है। आज आपने हमारे कार्यक्रम में फोन किया, आपको हम कौन सा गीत सुनवाएं?
1: तो आज मुझे एक गाना सुनना है, क्योंकि हालांकि उस दिन आएगा कि नहीं आएगा, तो क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है 15 अगस्त, तो उसमें एक गाना सुनना चाहता हूँ शहीद मूवी का, मेरे वतन के लोगों।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी जी, धन्यवाद।

0: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: हेलो झांसी।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: आप प्रमोद शर्मा बात कर रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं प्रमोद जी?
2: मैं सर दीदी ग्राम चताहरी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से बात कर रहा था दीदी।
1: अच्छा, कैसे हैं प्रमोद जी?
2: बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं दीदी?
1: हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और आपके यहाँ घर परिवार में आस पड़ोस सब कुशल मंगल है?
2: हाँ दीदी, सब बढ़िया है। और दीदी 15 अगस्त और रक्षाबंधन की आपको और आप पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीदी और श्रोतागणों को।
1: हाँ जी, हमारी तरफ से भी आप सभी को, परिवारजनों को, आपके समस्त रिश्तेदारों को हमारी तरफ से भी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की, आगे आने वाली पर्वों की। बताइए क्या चल रहा है, आप क्या करते हैं प्रमोद जी?
2: दीदी मैं गौ सेवक हूँ, गाय की सेवा करता हूँ दीदी।
1: क्या बात है। और बताइए इसके अलावा, ये तो कार्य आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
2: और दीदी थोड़ा बहुत किसानी भी कर लेता हूँ, अभी पानी का इंतजार कर रहे हैं कि पानी भगवान जल्दी से जल्दी वर्षा हो, लेकिन अभी बरसात हो नहीं रही है दीदी।
1: अच्छा, आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही? सब जगह तो
2: अभी नहीं नहीं है, अभी क्या है बिल्कुल घाम निकली हुई है।
1: अच्छा,
2: धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा।
1: चलिए, धूप पड़ रही है तो फिर बारिश आएगी, बारिश होगी।
2: दीदी मैं एक गीत सुनना चाह रहा हूँ।
1: हाँ जी बताइए।
2: कब तक चुप रहूंगी।
1: अच्छा, चलिए सुनवाते हैं आपको।
2: हाँ, इसमें दीदी गीत है ये, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है।
1: बहुत बढ़िया गीत का आपने सिलेक्शन किया है, मैं आपको सुनवाती हूँ आपका पसंद का गीत।

0: नमस्कार झांसी।
1: मैं झांसी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी श्रीनगर कश्मीर से बात कर रहा हूँ, फारूक।
0: क्या बात है, कैसे हैं फारूक जी?
1: बस आज हमने सुबह सवेरे रेडियो झांसी में फोन देखेंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और बताइए कश्मीर की वादियाँ कैसी हैं?
1: अभी तो मौसम काफी खुशगवार है, लेकिन पिछले दो हफ्तों से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से बीच में रुकावट आज चुकी थी। जो यात्रा यहाँ पे आई थी तो उसको रुकावट आ गई बारिश की वजह से।
0: क्योंकि बारिश अच्छी भी है और बारिश बुरी भी है।
1: जी जी जी, लेकिन ये तो कुदरत का नियम है, हमें हर चीज को अपने साथ मिलकर चलना पड़ता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये तो बात सही है, क्योंकि बारिश मेरे मन से नहीं होगी ना। और बताइए फारूक जी,
1: सोशल मीडिया में हमें आपस में बहुत ज्यादा मिलाया है।
0: हाँ जी सही कह रहे हैं।
1: रेडियो आवाजों का रिश्ता होता है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें और ज्यादा करीब कर दिया।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल फारूक जी। और बताइए आपके वहाँ पे हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आप कैसे मनाएंगे?
1: अभी तो तैयारी जोर शोर से चल रही है और रेमसल के प्रोग्राम आजकल सुकून और हर देहात में जारी है।
0: जी
1: 15 अगस्त के दिन सुबह सवेरे जाएंगे अपने अपने निजी इलाकों में और वहाँ पे अपना झंडा फहराएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी की भागीदारी है भारत देश को आगे बढ़ाने में, है ना। और तभी तो हम कह सकते हैं कि मैं भारत का वासी हूँ, है ना।
1: बिल्कुल सही बात आपने।
0: और बताइए आज हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म बॉर्डर का है, बॉर्डर का नगमा है, दिन से आते हैं, हम उसी नगमे को आज इस प्रोग्राम में चलाना चाहते हैं। उन फौजी बाजी के इस दिन अपने घर में सकते हैं और हमारे लिए सरदू पर गठित
0: है। ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। फारूक जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर और फिल्म का नाम था आर पार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से FM 103 मेगाहर्ट्ज और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत है चित्रगुप्त का और फिल्म का नाम है भाभी।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का ये गीत सुना। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है ससुराल।

ये सदाबहार गीत सुना। फिल्म का नाम था ससुराल। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों ने।

आन मिलो सजना। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत है श्री रामचंद्र का और फिल्म का नाम है आजाद।

मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म का ये गीत सुना। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आप प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 31वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है दीपक शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता हैं अंजलि कुमारी।
1: प्रस्तुत है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में आयोजित 31वें दीक्षांत समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य और स्वाभिमान से सिंचित इस ऐतिहासिक और पावन धरती पर आज का दिन बेहद खास था, जिस माटी में रानी लक्ष्मीबाई ने राष्ट्र निर्माण और क्रांति का शंखनाद किया था। उसी झांसी में आज देश के भावी निर्माता अपनी शिक्षा का संकल्प ले रहे थे। आज 13 अगस्त को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 31वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। चारों तरफ अपार उत्साह का माहौल था। विद्यार्थियों के चेहरों पर अपनी मेहनत की सफलता की चमक और झांसी की इसी विरासत पर गर्व साफ देखा जा सकता था।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की प्रोफेसर मुकेश पांडे, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं श्रीमती आनंदी बेन पटेल, माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, और प्रोफेसर नागेश्वर राव, अध्यक्ष ईसी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक बेंगलुरु, पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे श्री योगेंद्र उपाध्याय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और श्रीमती रजनी तिवारी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। कार्यक्रम की शुरुआत दीक्षांत शोभा यात्रा के प्रारंभ होने और उसके समारोह स्थल गांधी ऑडिटोरियम में आगमन के साथ हुआ।

इसके पश्चात बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत प्रस्तुत किया गया, जिसकी रचना कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भगवान दास माहौर ने की थी, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक थे।

0: इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से 31वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्राप्त की।
1: मैं माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें।
2: मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ।

0: इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने अपना संबोधन दिया।
1: आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आंगन में ज्ञान और संस्कृति का अनुपम संगम हो रहा है। यह संस्थान के इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ है जहां हम अपनी स्थापना के 50 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर विकास के 51वें वर्ष के अंतिम सोपान पर इस 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति महोदया एक ऐसा गरिमामयी, संवेदनशील एवं कर्मठ सार्वजनिक व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और प्रगतिशील दृष्टि दी है। आपने विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के सशक्त केंद्रों में विकसित करने की आवश्यकता पर निरंतर बल दिया है और विश्वविद्यालय अब परिवर्तित भी हो रहे हैं। माननीय महोदया का जीवन हमें जीवन से नवाचार, नवाचार से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। आपने हमारे दीक्षांत समारोह की गरिमा में उपस्थित होकर

श्री वृद्धि किए हम पुनः आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। झांसी की यह वीर प्रसूता वसुंधरा मात्र एक स्थान नहीं है अपितु सौर और अस्मिता की जीवंत गाथा है। यह वह भूमि है जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि भी है। वीरता और कर्मठता का साक्षी यह क्षेत्र आज आधुनिक शिक्षा के साथ भी कदम से कदम मिला रहा है। मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अपार गर्व हो रहा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को स्पर्श किया है। नैक द्वारा विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्रदान किया गया है जिसने हमें देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों की पट्टी में खड़ा किया है। विश्वविद्यालय स्तर से कुछ नवीन पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं जैसे हर्बल साइंस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एवं योगिक साइंसेस। आज के दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए कुल 81 पदक वितरित किए जाएंगे जिसमें कुलाधिपति स्वर्ण पदक 1, कुलाधिपति रजत पदक 16 एवं कुलाधिपति कांस्य पदक 18 है। इसके अतिरिक्त विन्यासी क्रम 46 पदक भी वितरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय अतिथि गणों को यह अवगत कराना चाहूँगा कि इस वर्ष भी पदक विजेताओं में नारी शक्ति ने अपना शौर्य दिखाया है। सभी कुलाधिपति पदकों में 80% छात्राएं हैं एवं छात्रों का प्रतिशत केवल 20 है। समारोह में कुल 34,946 उपाधियां एवं 8,300 उपाधियां प्रदान की जा रही है जिनकी माननीय कुलाधिपति जी द्वारा शीघ्र ही डिजी लॉकर पर अपलोड किया जा रहा है। अंत में प्रिय विद्यार्थियों, आज जब आप इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह से बाहर कदम रख रहे हैं तो याद रखें यह उपाधि आपके सफर का अंत नहीं बल्कि आपके सामर्थ्य की वास्तविक परीक्षा का प्रारंभ है। आपने यहाँ से जो ज्ञान अर्जित किया है उसे सत्य, विवेक और करुणा के साथ अपना मार्गदर्शक बनाएं, अपने ज्ञान से समाज के अंधकार को दूर करें और अपने पराक्रम से सफलता के नए आयाम रचें। जाइए निडर होकर, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और भारत को अपनी प्रतिभा और निष्ठा से आलोकित कर विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार कीजिए। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के मंगलमय, उज्ज्वल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: इसके बाद पिछवाई कला, जैन कला और लघु चित्र विशेषज्ञ भीलवाड़ा राजस्थान के दिनेश सोनी ने अपना उद्बोधन दिया।
1: मुझे यहाँ आकर के जो वीर भूमि है बुंदेलखंड, बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण आप लोगों ने चढ़ा दिया है, जिसे मैं प्रयास करूँगा कि मैं इसे, मेरी जो कला है इसको दूसरे बच्चों में या जो सीखना चाहे उनमें मैं ट्रांसफर करने का वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो बुंदेलखंड की जो कलाएँ हैं, यहाँ की पुरातन कलाएँ कई रही है, यहाँ के कई भित्ति चित्र हैं जिन पर कई विदेशी लोगों ने रिसर्च भी करी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस विश्वविद्यालय में अगर आप जो हमारी परंपरागत चित्रकारी है उसका भी कोई विषय अगर शुरू करते हैं तो मैं उसके लिए निःशुल्क योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप साल में दो या तीन बार मुझे बुलाएं, उसके लिए मुझे कोई मेहनताना या कोई पारिश्रमिक नहीं चाहिए। मैं ये चाहूँगा मेरी कला लोगों में जिंदा रहेगी तो वो सदैव मुझे याद रखेंगे। आदरणीय जिन्हें हम प्यार से बात करते हैं आनंदीबेन पटेल जी, इन्होंने गुजरात में हस्तशिल्प और जो वहाँ की लोकल परंपरागत कलाएं थी, जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 10 से 20 हज़ार कलाकार इनके संरक्षण में आज भी उन कलाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो आपका कलाओं के प्रति बहुत विशेष जुड़ाव रहा है, तो मेरा पुनः ज़्यादा शब्द नहीं लूँगा मैं और ज़्यादा आप लोगों को मेरे शब्दों के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और मुझे जो इतनी

0: इसके बाद माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती रजनी तिवारी ने अपना संबोधन दिया।
1: आज सर्वप्रथम मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में आपके माता पिता जिन्होंने आपके परिश्रम के साथ, आपकी लगन के साथ उन्होंने भी तपस्या की, और आपके गुरुजनों के मार्गदर्शन के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज आप जब पदक ले रहे, उपाधियां ले रहे, एक तो झांसी की धरती और दूसरे स्वाधीनता संग्राम दिवस हमारा आ रहा है 15 अगस्त, हम सब बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। आज इस अवसर पे जहां आपको मैं बधाई दे रही हूं, शुभकामनाएं दे रही हूं, मैं ध्यान कर रही हूं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपनी बलिदान दे दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और साथ ही साथ संविधान के निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा अंबेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज मैं उनको भी याद करती हूं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर बुंदेलखंड की वीर भूमि झांसी की धरती पर आना अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं ये धरती की मिट्टी को नमन करती हूँ जिसने भारत को यह सिखाया कि हिम्मत परिस्थितियों से नहीं, संकल्प से पैदा होती है। यह वही धरती है जहाँ एक वीरांगना ने अंग्रेजी साम्राज्य के सामने मजबूती से खड़े होकर यह दिखा दिया कि भारत की बेटी कमजोर नहीं है। मैं अपने युवाओं से कहना चाहती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की सबसे बड़ी पहचान उनकी तलवार नहीं थी, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने परिस्थितियों से पूछा नहीं कि मेरे सामने कितनी कठिनाइयां हैं, उन्होंने समय से स्वयं से पूछा कि मेरे सामने मेरा कर्तव्य क्या है, और यही आज के युवा की सबसे बड़ी सीख है। आपने उपाधियां ऐसे ही नहीं ले ली, आपने पदक ऐसे ही नहीं ले लिए, इसके पीछे आपका त्याग, आपका समर्पण, आपकी मेहनत, तब आपने उपाधियां ली, तब आपने मेडल लिए, स्वर्ण पदक, विशिष्ट पदक आपने लिए। सच में मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।

0: इसके बाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपना संबोधन दिया।
1: जिन्होंने आज उपाधियां प्राप्त की, जिन्होंने मेडल्स प्राप्त किए, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं उस मंच से। उनका जीवन सफल हो, उज्ज्वल हो, भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में उनकी भी आहुति हो। उनके माता पिताओं को भी बधाइयां, उनके गुरुओं को भी बधाइयां। विद्यार्थियों, आपको याद रखना होगा ता जिंदगी पूरे जीवन भर। ठीक है, आपने उपाधि ग्रहण की है, आपने उपाधि प्राप्त की है, आपने मेडल्स प्राप्त किए हैं, ये आपके श्रम का परिणाम है, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए आपके माता पिता का त्याग, बलिदान और संघर्ष, न जाने कितनी खुशियों का उन्होंने बलिदान किया होगा तब आपको ये मुकाम हासिल हुआ होगा, न जाने कितनी इच्छाओं का उन्होंने त्याग किया होगा आपके लिए कि आपको पढ़ाना है, आपको मुकाम पर पहुंचाना है, न जाने कितनी बार अपने पेट को काट कर, अपनी खुशियों को काट कर।

संघर्ष करके पढ़ाया है उनको कभी नहीं भूलना, जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ बने रहना, यह संकल्प होना चाहिए। जिन गुरुओं ने आपको मार्गदर्शन किया, आपको दिशा दी, यदि माता पिता और गुरुओं के बिना यह मुकाम हासिल कर लेते ये नामुमकिन था, यह आपको याद रखना होगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव कहा गया। इन तीनों को ही देवतुल्य माना गया है। आप नए जीवन में प्रवेश करेंगे, नए मुकाम हासिल करना चाहेंगे, अपने जीवन यापन के नए कार्य ढूंढना चाहेंगे, ढूंढने चाहिए भी मित्रों, आपको ये करना भी चाहिए। लेकिन हम राष्ट्र के प्रति क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये शिक्षा दीक्षा कहां से मिली, ये संसाधन विश्वविद्यालय के, ये सब आपके गुरुजन, सब योजनाएं कार्यक्रम क्या आपकी फीस से हो गए? ये इस राष्ट्र ने दिए हैं आपको, इस राष्ट्र ने निर्माण किया विश्वविद्यालयों का, ये सब संसाधनों का। तो हमें याद रखना होगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देते हैं।

0: इसके बाद मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव, अध्यक्ष ए.सी. नाग एवं पूर्व कुलपति इग्नू ने अपना संबोधन दिया।
1: शिक्षा स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों और रचनाओं का मुख्य विषय नहीं है, वे उभरते हुए आधुनिक भारत और प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर के धनी भारत के बीच की कड़ी थे। सन 1893 में एक जहाज में जे.एन. टाटा व विवेकानंद जी के बीच भारत के योग व आध्यात्मिकता के विषय में जो विचार विमर्श हुआ, उसकी परिणति बेंगलुरु में टाटा द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के रूप में हुआ, जो आज विश्व प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ज्ञान का सर्वोत्तम पुरस्कार ज्ञान ही है, और उस ज्ञान की जिसकी उपयोगिता है। कोई भी अकादमिक संस्थान केवल उपाधियां बांटने का केंद्र नहीं होता। कोई उच्च शिक्षा परिसर केवल प्रवेश परीक्षा और परिणाम के त्रिभुज में कैद होकर रह नहीं सकता। विश्वविद्यालय केवल इसलिए नहीं बनाए जाते, विश्वविद्यालय हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ है, ज्ञान गंगोत्री है, बोध की अमृत धारा है, और इस महान देश की महान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महान नागरिकों को तैयार करने वाली कार्यशाला भी है। ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त कर गुणवत्ता नवाचार एवं उत्कृष्टता का जो मापदंड स्थापित किया है, वह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रेरणा स्रोत है।

0: कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपना उद्बोधन दिया और उन्होंने विद्यार्थियों को दीक्षांत उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करने के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वाद वचन दिए।
1: देविया सज्जन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 21वें दीक्षोत्सव आप सबको हार्दिक बधाई देती। आज का उत्सव छात्र जीवन की दीर्घ साधना, अनुशासन, परिश्रम और ज्ञान अर्जन की तपस्या के पूर्ण होने के उपरांत राष्ट्र एवं समाज की सेवा के एक नवीन अध्याय का शुभारंभ का उत्सव है। आज कुल 34,947 उपाधियों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया है। इनमें 20,295 छात्राएं और 14,600

अव्वल छात्र सम्मिलित हैं। उपाधि प्राप्त करने वालों में छात्राओं की भागीदारी लगभग 58% है, जबकि छात्रों की भागीदारी 42% है। आज 79 पदकों में से 35 कुलाधिपति पद तथा 44 विन्यासकृत पदक सम्मिलित। इन पदक विजेताओं में 63 छात्राएं और 16 छात्र हैं। अर्थात पदक प्राप्त करने वालों में भी छात्राओं की हिस्सेदारी लगभग 80% है, जबकि छात्रों की हिस्सेदारी 20% है। अब स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो आप सबको मैं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष, साहस और बलिदान का स्मरण करने का अवसर है, जिनके अथक प्रयासों से हमें स्वतंत्र भारत में जीवन जीने का गौरव प्राप्त हुआ। हमें उनके बलिदानों को स्मरण करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। वर्तमान में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस अभियान में उत्साहपूर्वक सहभागी बने और अपने घरों तथा आसपास के लोगों को भी तिरंगे के सम्मान के लिए जागरूक करें। आज आप अपने शैक्षणिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं जी। आपके हाथों में मिली उपाधि के साथ राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, अपने ज्ञान, प्रतिभा और परिश्रम का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें, यही हमारे स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नागरिकों के निर्माण की प्रयोगशाला होती है, यहीं से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ संवेदना, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी वाहक बने, यही शिक्षा की एक सफलता है।

0: कार्यक्रम समाप्ति के बाद छात्र छात्राएं बहुत ही प्रसन्न नजर आए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।
1: आई एम पलक पांडे फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। टुडे आई टॉप इन माय एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और उसके लिए मैं काफी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब भी मेहनत करिए एंड मैं यही कहना चाहूंगी, सब पढ़िए, मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।
2: नमस्कार सभी को, मेरा नाम सूर्यकांत पांडे है। मैं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज मुझे स्नातक की डिग्री कम्प्लीट हुई है जिसमें मुझे कांस्य से पदक मिला है और ये सम्मान पाकर मैं काफी खुश हूँ और विश्वविद्यालय ने भी काफी अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है तो इसके लिए भी काफी खुशी है। सब लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, डिग्री भी पूरी हो गई। धन्यवाद।

इस अवसर पर बड़ी मात्रा में गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और जन सामान्य उपस्थित थे। इसी के साथ ये रेडियो रिपोर्ट यहीं पर समाप्त होती है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और

0: पत्ती भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 31वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था दीपक शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर